0: at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
2: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
0: Your new destination has arrived.
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
7: मामू, देखो क्या हो गया.
8: ओ, क्या हो गया?
7: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
8: कोई जर्मन का कमाल है.
7: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
8: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
6: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
9: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
6: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
10: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
13: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
12: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
13: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
14: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
15: Guys, you're listening to me, Ippy the Hippie, and it is 7 o'clock on the clock. It is 7 p.m. on the clock, and we are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is my show. An evening in Dallas. Yes, the time is here and we shall be listening to lots of amazing, amazing tunes. Agar aap mere ko sun rahe hain pichle ek ghante se, then you are probably already listening to some amazing tunes. And we had two giveaways. One was Vishal Shekhar tickets and one was from this other lounge called Mirage Lounge, where you got some food coupons and stuff like that. Well, we have two giveaways here. Yahan pe bhi 8 baje aur 8:30 mera jo normal clock rehta hai giveaway ka, it's always at that time. So stick around because we have some fun things to do. And I'm going to play you some amazing music today. Aaj maine na is hafte pata hai kya kiya? Maine sirf chill kiya. Maine apne ghar ki safai kari. Maine khana pakaya because I actually had time. I didn't have any camps this week. So it was more or less a chill week. Only just like lessons, private lessons. And then this radio thing. Which is actually still less. I mean, it was like overall, I worked maybe 6 hours, I think. Or maybe 7 hours, which is actually less for me. Because if you know, then I'm doing 14 shifts today. Because, I don't know, life has become one of those where I have to work a lot. Because so much of opportunities have come in my way. And I'm the one person who says, ki bhai, agar aapko opportunity mili hai, कुछ काम करने की, तो आप उसको लो, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट. पता चले बाद में अपॉर्चुनिटी आए ना आए, यू नो, यू कैन नेवर टेल व्हाट इज गोना हैपन लेटर ऑन इन लाइफ. तो से येस टू एवरीथिंग, इवन इफ इट माइट be a bad thing, eventually you will learn a lesson from it. You might regret it, you may not regret it also, but there's always something to learn from every single opportunity that you get in life, hai na? To usi se aage badhte hain, ye gana suniye.
16: Careful what you wish for.

All right, guys, this next song goes out to Zimran. Zimran, congratulations on your new car. तुम्हारी गाड़ी तो आई है, आई नहीं नहीं आई है, लेकिन we will play आई नहीं for you. कौन नहीं आई, सब तो आ गई है, गाड़ी तो आ गई.

गाइज, मैंने ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखी उस दिन इंस्टाग्राम पे. दिस 90-year-old वुमन, 90 ईयर ओल्ड, मतलब शी इज 90 साल नाउ. शी फाइनली अग्रीज टू मैरी हर 95-year-old बॉयफ्रेंड आफ्टर बींग टूगेदर फॉर 64 years. मतलब 64 years तक उनकी रिलेशनशिप रही, जो आजकल शादियां भी नहीं टिकती इतने सालों तक. मतलब 64 years इज अ बिग माइलस्टोन. उनकी रिलेशनशिप जस्ट एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 64 years तक चली, एंड एट द एज ऑफ 90 and 95 दे फाइनली गॉट मैरिड. एंड दे आस्क्ड हर व्हाई एट दिस एज, एंड देन व्हाई डिडंट दे गेट मैरिड अर्लियर, यू नो. एंड यू नो व्हाट हर आंसर वाज? शी सेड, Men change their mind way too often. I just had to make sure that he was going to stick around before I got married. Guys, I mean, totally, I'm with her. I have dealt with all those things. And, you know, at some point of time, मैंने कहा भाई भाड़ में जाए, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे. भाई, I'm happy being single, not ready to mingle anytime soon. I'm happy living my single life in my own apartment, in my beautiful job that I have, making decent amount of money and spending my time just being with myself. Well, that's the way to go in 2026. Tab tak ke liye aap ye gana suniye.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan mummy.
3: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
5: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
6: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
7: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
6: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
7: ओके देन, Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
10: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
0: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
15: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
16: It's Lawson.
15: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
16: It's Lawson.
15: Daddy, what is the law?
17: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
18: मैं शादी करूँगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूँगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
19: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: मैं।

Guys, we are back, and this is Ippy the Hippie, and y'all are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is my show, An Evening in Dallas. Guys, ye sab to saath mein gaana padega, theek hai? Dobara gaate hai, aap sab saath mein gaana mere. 1, 2, 3, let's go. An Evening in Dallas. Diggi-diggi, diggi-diggi. वैसे अभी तो मुझे पता नहीं कौन गा रहा था मेरे साथ या नहीं, बट आई एम होपिंग आप सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठ के गा रहे होंगे. तो इसीलिए आप सबके लिए ये प्यारा सा गाना, जो ना मुझे आता है ना आपको आता है, लेकिन हम सुन जरूर सकते हैं उसको, है ना?

राइट फोक्स, तो आज आपकी जिंदगी कैसे जा रही है? हैव यू गॉन ऑन एनी सम फन डेट्स, इधर विद समवन न्यू और विद समवन ओल्ड लाइक योर पार्टनर? आई मीन दैट्स ओके, डेट्स आर स्टिल डेट्स, यू नो. आई वेंट टू ब्रेकफास्ट टुडे बाय माई सेल्फ बिकॉज समटाइम्स आई लाइक टू डू सोलो डेट्स. लेकिन डेट्स की अगर हम बातें करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है जिंदगी में? वेन यू कम टू अ न्यू कंट्री लाइक अमेरिका, Nobody teaches you what your financial strategy is supposed to be like, okay? Nobody teaches you all of that. You just kind of have to kind of wing the whole thing. When I was in India, my dad, he just had one like PF account और वो उनके ऑफिस के थ्रू ही मिलता था, एंड दैट वॉज प्रीटी मच इट. हाउएवर यहाँ आके आई हैड टू रीलर्न ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लाइक यू नो आई हैड लाइक दी सेल्फ हेल्प बुक्स दैट आई वॉज ट्राइंग टू रीड एंड एवरी थिंग. बट डोंट बी लाइक मी, डोंट टेक द स्लो वे आउट, गो टू माई टाइम इक्विटी. माई टाइम इक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाई हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. वेदर यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वेल्थ रिटायरमेंट और ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, माई टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइन अराउंड योर गोल्स. विजिट माई टाइम इक्विटी डॉट कॉम और कॉल 4697021272 टूडे. जो गाना आपने पहले सुना दैट वॉज बाय किंग एंड मिस्टर निक जोनस, हु इज समटाइम्स आई ऑल्सो लाइक टू कॉल मिस्टर चोपड़ा जस्ट फॉर फन, बट ही इज जोनस एंड शी इज मिस प्रियंका चोपड़ा जोनस, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट.

You guys, this is Ippy the Hippie and y'all are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. In about 8 minutes, हम लोग एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे. लेकिन उसके पहले, गाइज, अगर आप किसी ट्रक एक्सीडेंट में या किसी भी स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में फंस जाते हैं एंड यू नो दैट हे यू आर नॉट एट फॉल्ट एंड यू डिजर्व टू गेट कॉम्पेंसेटेड, देन यू नो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू समटाइम्स फाइट फॉर आर सेल्व बिकॉज वी डोंट नो ऑल द लूप होल्स. इट्स रियली ट्रिकी टू डील विद ऑल ऑफ दैट स्टफ, स्पेशली अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ भी डील करना होता है. यू नो द मेंटल स्ट्रेस इज ऑलरेडी सो मच. तो इन दैट केस यू नीड टू फाइंड समवन लाइक अटर्नी ओमर ख्वाजा. He will come and fight your case and he will help you get the compensation that you deserve because dealing with insurance companies is very stressful. वैसे ही accident तो वैसे ही stressful होता है, plus insurance companies के साथ deal करना is very very tricky. You need an attorney that will make sure that you are well compensated and you don't pay until you win. So for a free consultation call 469-300-5046 or visit attorneyomer.com. हाँ जी भाई, यही होता है. सो यू गॉट बी केयरफुल. ओके, आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू रियल क्विक एंड व्हेन यू कम बैक एट 8 o'clock वी विल हैव द गिव अवे. आई हैव टू रियली अमेजिंग गिव अवेज टुडे. गिव अवे चेंजेस, इस हफ्ते का गिव अवे थोड़ा अलग है क्योंकि महीना नया आ चुका है. आई हैव सम विशाल एंड शेखर टिकट्स टू गिव आउट एंड आई हैव ए न्यू रेस्टोरेंट रेड हॉट chili pepper, which is actually not that new, it's very old. They have amazing food. I've actually eaten food there. So I have a wonderful giveaway from that restaurant as well. So make sure you are listening after 8 o'clock and all the way until 9 o'clock. Kyunki tab hota hai hamara giveaway. Tab tak ke liye aap ye gana suniye and we'll be right back. This is Of Sumanshu, the Rish and Lisa Mishra with Bahane.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
4: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया.
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया.
4: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविन.
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.

0: Hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: भाई स्वैग से तो हम भी आपका स्वागत करते हैं क्योंकि हमारा स्वैगर ही कुछ ऐसा है. दिस इज इपी द हिपी एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू फनेशा रेडियो 104.9 FM ऑन माय शो एन इवनिंग इन डैलस. डिगी डिगी बिश गाइस, टाइम आ चुका है आपके फेवरेट सेगमेंट का, मेरे फेवरेट सेगमेंट का. लेकिन फेवरेट सेगमेंट है क्या मुझे पता है. वी ऑल लव फ्री थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई विश एवरीथिंग इन लाइफ वॉज फ्री, बट द वर्ल्ड वुड बी एन एनार्की इफ दैट वॉज द केस. तो इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, बिकॉज बिना मेहनत के अगर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा तो हम उसको वैल्यू नहीं करेंगे ना. थोड़ी मेहनत से ही वैल्यू आती है चीज़ों की. लेकिन हमें आपकी वैल्यू पता है इसीलिए हम आपको गिव अवे देते हैं. तो हमारा पहला गिव अवे है From India Bazaar, Fort Worth. Actually, yes, this is your chance to win a special grocery hamper from India Bazaar, Fort Worth, your one-stop destination for authentic Indian groceries, fresh produce, spices, snacks, and all your desi essentials. India Bazaar, located at 5152 Quadrant Way in Fort Worth. For people living in Fort Worth, Keller, Hurst and Haslett. ठीक है, अगर आप उस एरिया के आसपास हैं, साउथ लेक भी आता है, ग्रेप वाइन भी आता है उस एरिया में, then you should head down to Fort Worth वाले लोकेशन, इंडिया बाजार के लोकेशन पे. ओके, तो गाइज आपको पता है ना कैसे करना है. मेक श्योर कि आप पिछले एक महीने में कोई, अच्छा वैसे महीना तो नया ही शुरू हो गया, सो टेक्निकली दिस डजंट अप्लाई. हाउएवर मैं आपको क्वेश्चन दोबारा बोल देती हूँ, हमारा गेम कैसे खेलते हैं. जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको पता ही है. आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग एंड यू हैव टू टेल मी द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग. यूजुअली इट्स वेरी वेरी इजी क्योंकि ये गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं और आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं. बट ये शायद आप ये वाला गिव अवे, लेट्स सी इफ यू कैन गेट इट विद इन लाइक द फर्स्ट 30 seconds, देन ग्रेट. अगर नहीं होगा देन आपको मैं हिंट दूंगी. ठीक है, तो आप इंडिया बाजार से एक हैम्पर जीत सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का. तो चलिए खेलें. माय नंबर इज 9722355555 9722355555. सो लेट्स गो अहेड एंड प्ले द गेम एंड हियर गोज आवर फर्स्ट सॉन्ग.

0: can you hear me?
1: Yes, I can hear you.
0: Okay, great. पहले तो आप अपना नाम बताइए एंड दूसरा आपको आज का आंसर पता है कि नहीं वो बताइए.
1: शायद मुझे पता है, मेरा नाम है स्नो, फर्स्ट नेम स्नो, लास्ट नेम गुप्ता.
0: वाओ, स्नो क्या नाम है यार आपका, सो यूनिक, SNOW.
1: यस यस.
0: वाओ, आर यू कोल्ड लाइक द स्नो और आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग इट.
1: नो,
0: are you
1: not
0: are,
1: at all,
0: you're like warm like when snow melts, that's what you are.
1: Yeah, I think Texas needs that, that's why I'm here.
0: That's true. Texas वैसे Texas में बहुत गर्मी पड़ती है. We need a little snow in our lives, honestly. In this weather we would love a little snow. So snow ji, what is the answer to the question?
1: I think gana hai dil mein baje guitar, dekha jo tujhe yaar.
0: Are kya baat hai, congratulations. Main to bada mushkil sa lag raha tha, mujhe laga koi nahi jeetega, aap jeet chuke hain. Wah, thoda sa gaaye hum saath mein, hai? Ready?
1: Okay.
0: 1 2 3 4 dekha jo tujhe yaar dil mein baje guitar, uske aage mujhe utna cha raha aisa ye nasha re hai na.
1: यस यस, मुझे भी नहीं आता इतना, मैंने बस दो ही लाइनें पकड़ पाई थी.
0: आई थिंक वो दो लाइन ही बहुत थी. चलो गाइज, आप ये गाना सुनो तो स्नो जी आप लाइन पे रहिए, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन, बट पहले मैं ये गाना लगाती हूँ आपके लिए. ओके,
1: थैंक यू,
0: ऑफ कोर्स, स्टे ऑन द लाइन गाइज, एंजॉय द ट्यून.

0: गाइज, दिस इज योर लकी वीक. भाई, आई थिंक यू गाइज आर गेटिंग लाइक सुपर लकी. या तो मैं आपका लकी चार्म हूँ, या आपकी जो इतने रिस्पॉन्सेज और कॉल्स मुझे आते हैं, दैट इज मेकिंग मी लकी फॉर यू. यू नो वाई? क्योंकि पिछले हफ्ते से, जैसे आपको पता ही है, जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं, यू गाइज ऑलरेडी नो दैट हम लोग पहले मैं एक गिव अवे करती थी, ठीक है? वंस अ डे इन माई वंस एवरी 3 आवर्स एक गिव अवे होता था मेरे शो पे. फिर लास्ट वीक से मेरे शो में एक नहीं, दो दो गिव अवे हुए. मैंने कहा वाओ, इतने क्वेश्चंस तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पूछा. मुझे इतना रिसर्च करना पड़ेगा वो कॉपी कैट सॉन्ग ढूंढने के लिए, ठीक है? मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिपीट इट. तो पिछले हफ्ते थे दो दो गिव अवे. इस हफ्ते से, इनफैक्ट इस महीने से, जुलाई के महीने से, मेरे पास दो नहीं, आप सबके लिए तीन तीन गिव अवे है. एटलीस्ट आज तो है. आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू कंटिन्यू और नॉट, बट फॉर टूडे आई हैव थ्री थ्री गिव अवेज. एक तो मेरा हो गया, जिन्होंने इंडिया बाजार का गिफ्ट हैम्पर जीत लिया, वेरी गुड भाई. कॉल्स, थैंक यू फॉर ऑल द कॉल. लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ, तो पहले मैं अपनी बातें खत्म कर दूँ, देन आई विल टेक योर कॉल्स. दूसरा गिव अवे है इज फ्रॉम फन पिज्ज़ा किचन. अगर आप नहीं गए हैं फन पिज्ज़ा किचन में, देन यू मस्ट गो एंड ट्राई आउट द यमी पिज्ज़ा विच हैज़ देसी फ्लेवर्स ऑन लाइक दिस ब्यूटिफुल चीजी क्रस्ट एंड इट्स सो अमेजिंग. एंड दे हैव लाइक दिस मोस्ट अमेजिंग टिरामिसू ऑल्सो, बिकॉज आई हैड इट. आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर मैं नहीं गई होती तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती आपको जाने के लिए, बट आई कैन टेल यू, सो यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड. दिस 4th of July सेलिब्रेट विद अ फीस्ट एट फन पिज्ज़ा किचन. दे हैव टू डील्स गोइंग ऑन. वन इज देयर फ्रीडम फीस्ट फॉर $30.99, एंड द अदर वन इज द लिबर्टी फीस्ट फॉर $35.99. तो आपको क्या मिलेगा? यू कैन गेट अ मीडियम सिग्नेचर पिज्ज़ा, ए लार्ज चीज ब्रेड विच इज लाइक यू नो अ पिज्ज़ा विद लॉट्स ऑफ चीज, और एंड अ चॉइस ऑफ इधर चीज केक और अ टिरामिसू, या फिर यू कैन ऑल्सो एड ऑन टू दैट एंड गेट द लिबर्टी फीस फॉर $35, एंड यू कैन एड ए चॉइस ऑफ लार्ज फ्राइज और फाइव विंग्स अलॉन्ग विद ऑल द अदर ऑप्शन. सो दिस ऑफर इज वैलिड फॉर डाइन एंड ओनली. फॉर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com. तो यू कैन ट्राई दीज ऑफर्स. लेकिन आपको गिव अवे में क्या मिलेगा? गिव अवे में आपको मिलेगा वन लार्ज पिज्ज़ा, एनी फ्लेवर फ्रॉम द मेन्यू. एंड दिस इज वैलिड नॉट ओनली, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द डाइन इन लोकेशन, डाइन इन एट द फ्रिस्को लोकेशन, एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर टेकआउट. ऑफर वैलिड फ्रॉम 2nd to 5th of July. तो अभी कुछ दिनों के लिए चलेगा. आज मैं तो लास्ट डे है मेरा, थर्सडे. यहाँ पे आपको मैं मंडे को मिलूंगी, लेकिन तब तक के लिए समवन लकी इज गोना गेट दिस गिफ्ट कार्ड. तो आर यू रेडी टू प्ले द गेम? दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ कॉपी कैट गेम. आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू अमरीका, क्योंकि अमरीका का 250th बर्थडे है यार, सैटरडे को. अगर आपने प्लान्स बना लिए, ग्रेट. नहीं बनाया तो मुझे भी बुला लेना अपने प्लान्स में, मैं भी फायर वर्क देखने जाऊंगी कहीं. तो मेरा कोई प्लान्स नहीं अभी तक. तो माई क्वेश्चन इज, हु वर द पीपल हु रोट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने नेशनल ट्रेजर मूवी देखी है, या नहीं देखी है, और यू नो योर अमेरिकन हिस्ट्री, देन यू नो हु रोट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड हियर गोज.
1: Or
0: हाय.
1: you know your American history, then you know. Who wrote the Declaration of Independence?
0: ओ, आई कैन हियर माय
1: And here
0: सेल्फ बिहाइंड, बाय
1: goes.
0: द वे. इज दैट श्रीकांत?
1: Srikant.
0: हाय श्रीकांत, यू ऑलरेडी वन अ गिव अवे टुडे, सो अनफॉर्चुनेटली आई कांट गिव यू दिस वन, सो आई वी हैव टू गिव इट टू
1: Okay,
0: समवन एल्स.
1: no problem. I thought this is a different context. Okay, no
0: नो
1: problem.
0: वरीज. ऑलराइट गाइस,
1: Thank you, bye.
0: क्वेश्चन इज स्टिल ओपन. ओके, एंड वी हैव आवर कॉलर. हाय, यू आर ऑन एयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग.
2: Hi.
0: First, tell me
2: So,
0: your name and then tell me the name of the person who wrote the Declaration of Independence.
2: my name is Apeksha
0: Okay.
2: Mandhan, and the name of the person is Thomas Jefferson.
0: Very good, Apeksha. Congratulations. Woohoo! You have won the giveaway and you win a large pizza of any flavor. Okay, but you have to go to the Frisco location and make sure you dine in and eat it. ठीक है, you have to sit there and eat it. So go with your family and friends and just enjoy the pizza. Okay?
2: Got it.
0: Awesome. Stay on the line because I'm going to take your information. And तब तक के लिए मैं एक गाना बजाती हूँ. Guys, come back and we will talk some more.
2: Got it.
3: खाएंगे तो जी।

0: गाइस, लिरिक्स में सुना था आपने क्या बोला? उसने बोला, साबुन की शक्ल में तू निकला पूरा झाग, क्या झाग, तू निकला सिर्फ झाग। मेरे को ये बोलना है कि भाई झाग भी कई बार पोटेंट होता है यार। आजकल आपने फोम सोप डिस्पेंसर्स नहीं देखे, जो आप पंप करोगे सिर्फ झाग ही निकलती है, लेकिन हाथ उससे बड़े अच्छे साफ से धुलते हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ झाग। समटाइम्स झाग कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी पावरफुल, यू नो, यू नेवर नो। समटाइम्स अ झाग इज ऑल वन नीड्स इन हिज लाइफ। डोंट अंडर एस्टिमेट वॉट झाग इज। मे बी द झाग कैन बी अ टॉक्सिक झाग ऑल्सो। मे बी इट्स अ साबुन वाला झाग, मे बी इट्स केमिकल, यू नेवर नो।
1: Coughing or sneezing at home, your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
1: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
4: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
5: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
5: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
6: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
9: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
0: Guys, Vishal Shekhar are coming to Dallas. That is correct. Dallas Bollywood fans, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव. दैट इज करेक्ट. अगर आपको विशाल शेखर के गाने बहुत पसंद है, जो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आई लव देयर ओल्ड स्टफ, न्यू स्टफ, एवरीथिंग, देन दे आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस. व्हेन इज इट? जुलाई 12th को दे आर परफॉर्मिंग एट द कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड. द टिकट्स आर फॉर सेल नाउ ऑन cashpatelproductions.com. Okay, so make sure you go buy your tickets. But for you guys, my favorite Funasia listeners, you know we have a special offer for you guys, which is you can get a 30% discount by using the code FUNASIA. तो अगर आपके दोस्त वैसे ही टिकट्स खरीद रहे हैं फेसबुक पे देखकर, तो उनको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे एब्सोल्युटली डेडिकेटेड फनेशिया लिसनर्स के लिए ही है. दैट 30% डिस्काउंट. अगर आप गिव अवे नहीं जीते हैं, कोई बात नहीं यार, 30% डिस्काउंट इज प्रीटी गुड. आई थिंक यू शुड गो बाय योर टिकट्स एंड मेक श्योर यू गो चेक आउट विशाल शेखर लाइव. ओके.

Oh, such a super funky groovy track. I love that song. जब से वो आया है ना track, मतलब बहुत सालों पहले निकला था वैसे तो, but I have always been in love with that track. I mean, such a cool song. Guys, it is time for our second giveaway. अगर आपको नहीं पता second giveaway क्या है, तो same है, मैं बता देती हूँ. You can win. This is a new one, by the way, guys. This is from Red Hot Chili Pepper. I have had their food. It is absolutely amazing. You can win their dry chili chicken or chili baby corn, or they claim to be Dallas's best butter chicken. And you know what? Hippie the Hippie loves a good butter chicken. I do. Okay? Which is called RHCP's Chicken Makhan Wala, by the way. तो आप ये तीनों में से कोई भी एक डिश जीत सकते हैं. यू कैन चूज योर पिक फ्रॉम दीज लोकेशंस, विच इज रिचर्डसन, मिकिनी और एलन. ओके, ओनली एट दीज लोकेशंस. इट इज नॉट वैलिड ऑन द फ्रिस्को लोकेशन. तो गेम क्या है? सिंपल. आई विल प्ले अ सॉन्ग एंड यू टेल मी द कॉपी कैट सॉन्ग ऑफ दैट. तो रेडी है? तो लेट्स प्ले. हियर वी गो.

0: can you hear me?
1: Yes, ma'am. This
0: yes.
1: is Sriram from McKinney.
0: Yes. Can you tell me your name again? आप दोबारा नाम बताएंगे ना?
1: Yeah, Shrirang. Shrirang.
0: Okay. R-A-N-G. Shrirang.
1: जी.
0: Okay. Shrirang ji, what is the correct answer?
1: So, ये जो शुरू की tune है ना, वो इश्क मूवी का नींद चुराई मेरी किसने वो सनम तूने उसमें यूज की है.
0: वेरी गुड. एक्चुअली पूरा गाना ही उसमें चुराया है उन लोगों ने, लेकिन आपने बहुत सही जवाब दिया. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं रेड हॉट चिली पेपर से ड्राई चिली चिकन, चिली बेबी कॉर्न या फिर डैलस बेस्ट बटर चिकन. कॉन्ग्रेचुलेशंस.
1: ऑसम, थैंक यू.
0: तो आप लाइन पे बने रहिए, मैं गाना लगाती हूँ एंड देन आई विल कम एंड टेक योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो आप लाइन पे बने
1: रहिए.
0: गाइज, एंजॉय द सॉन्ग इन द मीन टाइम.
2: नींद चुराई मेरी किसने वो सनम तूने.
0: हाय श्रीराम जी.
1: हे नमस्ते.
2: ओ चैन चुराया मेरा किसने वो सनम तूने.
0: हाँ
2: ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है.
0: हाँ हाँ, आपने आंसर करेक्ट किया. आप मुझे अपना इन्फॉर्मेशन बताइए.
2: तू है.
0: आपने आंसर तो ऑलरेडी दे दिया ना. हाँ हाँ, तो आप अपना पूरा नाम बताइए और बाकी वो आंसर. तो आप आंसर.

0: डबल हो गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
3: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
5: Documents ya parcel bhejni hai?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
11: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
12: इट्स लॉसन।
11: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
12: इट्स लॉसन।
11: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
13: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
14: Hi, this is Sharvani. You are listening to Fun Asia Radio.

All right, guys, we are back. You guys are still listening to Ippy the Hippie on Funasia Radio 104.9 FM. और मेरे साथ आपका सिर्फ एक घंटे का सफर बाकी है पूरे हफ्ते के लिए, ओके? क्योंकि उसके बाद मैं वापस आऊंगी मंडे को. आज दिस इज माय लास्ट आवर दिस वीक, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट. बाय द वे, है ना? तो गाइस, आप कभी गाड़ी के या किसी भी टाइप के एक्सीडेंट में फंस चुके हैं? लाइक यू नो, लाइक सम काइंड ऑफ अ सीरियस सिचुएशन. आई हैव बीन इन अ सिचुएशन लाइक दैट. एक बार ना 35 पे टर्न करते हुए सम गाय लाइक हिट माय कार एंड यू नो आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट. इट वाज इन द मिडल ऑफ द हाईवे. इट वाज नॉट माय फॉल्ट. आई वाज टर्निंग इनटू इट. वो अपने फ़ोन पे खेल रहा था. आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग ऑन हिज फोन, बट I did not know how to deal with that accident in such situations. I was still new in the country and I had just pretty much started driving in America. So I did not know the rules ki kya karna hai, nahi karna hai. I was just so shocked. And is type ke situation mein na, you know whose number you need to have? You need to have attorney Omar Khwaja's number. Because he will come and he will fight your case and he will help you get the compensation you deserve. Kyunki ye log jo hai na, jo accident karke aage nikal jate hain, उनको तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. यू विल बी एट अ लॉस. आपकी जेब से पैसे निकलेंगे. मे बी यू गेट हेल्थ इशूज और व्हाटएवर. यू डोंट वांट टू डील विद ऑल दैट सिचुएशन. डीलिंग विद उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना भी इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू एक्चुअली विन. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-300-5046 और विजिट attorneyomar.com. ओके, don't be like me. Call someone who knows how to handle this stuff. Okay, I've learned from my mistakes. You also learn from my mistakes. So enjoy the song.

गाइस, जाने से पहले बिफोर इन द ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट रविंद्रनाथ टैगोर इमेजिन हिज वुमेन लाइक हिज कैरेक्टर्स टू बी, एंड ही रिप्रेजेंटेड फेमिनिज्म इन अ वे दैट नोबडी लाइक मेनी इयर्स लेटर. यस, ऑफ कोर्स देयर वर मेनी मूवीज मेड, बट ही हैड डन इट लाइक अ लॉन्ग टाइम अगो थ्रू द कैरेक्टर ऑफ लाबण्या. एंड दिस इज पार्ट ऑफ दिस प्ले एंड दिस स्टोरी कॉल्ड शेषर कोबिता. He showed us that love isn't enough if it costs your identity. Actually, he didn't show us, the character showed us, Lavanya showed us that love isn't enough if it costs your identity. Choosing yourself, choosing your own identity, choosing who you are is not the same as giving up on a marriage. So Lavanya walked out of a marriage because she could no longer find who she actually was. वो उनकी खुद की आइडेंटिटी क्या थी, शी कुडंट फाइंड दैट. क्योंकि खुद की आइडेंटिटी ढूंढना, खुद का पर्पज ढूंढना, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी हैप्पी. अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, यू हैव टू मेक योर लाइफ मीनिंगफुल. और वो मीनिंग किसी भी चीज़ में हो सकती है. कुछ लोग अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों में वो मीनिंग ढूंढ लेते हैं. कुछ लोग दे लुक फॉर दैट मीनिंग इन समथिंग एल्स. सम पीपल लाइक मी, आई लुक फॉर दैट मीनिंग इन माई कनेक्शंस. व्हेन आई टॉक टू यू गाइस, दिस इज मीनिंगफुल टू मी. दिस जॉब इज सो मीनिंगफुल टू मी. माई पर्पस इज माई म्यूजिक, माई करियर. जब मैं अपने गाने बनाती हूँ, दैट इज मीनिंगफुल टू मी. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ. अगर आप, एंड दिस अप्लाइज टू मैन एंड वुमेन बोथ आई थिंक, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे एंड यू ऑलवेज थिंक अबाउट द अदर्स, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग टू डू बाय द वे, लेकिन अगर आप खुद की खुशी हमेशा सैक्रिफाइस करोगे तो आपके पास खुद की खुशी नहीं होगी, तो दूसरों को आप बांटोगे क्या? यू नीड टू हैव योर ओन प्लेट फुल, तब जाके अपनी प्लेट में से आप दो चीज़ें बांट सकते हो, है ना? तो उसी से ये गाना सुनते हैं, एंड देन वी विल कम बैक एंड टॉक सम मोर.

ऑल राइट गाइस, वी आर बैक. हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले, हैव यू फाइल्ड योर टैक्सेस दिस ईयर, या फिर आप एक्सटेंशन के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर डू यू हैव योर टैक्स स्ट्रेटजी फॉर दिस ईयर? इफ यू हैव डन इट, देन ग्रेट. एंड इफ यू वेंट थ्रू ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक आई डिड एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, well then you can plan for next year, and you know who's going to help you out with that? AG Fintax. This part of the show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. Call 469-942-9888 or agfintax.com. you can visit them at agfintax.com. शाम अभी भी जवा है. मैं भी 9 बजे, जब 9 बजे थे ना घड़ी पे, तो आई स्टेप्ड आउट ऑफ दिस ठंडा ठंडा ऑफिस, क्योंकि मेरे हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए हैं और मुझे टाइप भी नहीं किया जा रहा था. सो आई स्टेप्ड आउट, आई वेंट आउटसाइड द बिल्डिंग गाना बजा के. मैं कहा नहीं यार, मुझे थोड़ी देर यू नो, गर्मी में खड़े होके एक्चुअली आई एम इन्जॉइंग द हीट. ये जो 90 डिग्री वेदर है, आई एम इन्जॉइंग इट आफ्टर बींग इन दिस फ्रीजिंग स्टूडियो फॉर लिटिल बिट. बट एनी वेज, एंड देन आई रियलाइज, हे दैट वॉज माई फर्स्ट एनी वेज, एंड देन आई रियलाइज कि भाई 9 बजे तक लाइट है बाहर. सो अमेजिंग. मैं देख ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपके साथ बातें करती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए, मेरी आप देखिए एंड यू ट्रांसफर ऑल दैट एनर्जी टू मी सो आई कैन एन्जॉय इट थ्रू योर आइज. आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं, क्योंकि शाम अभी भी जवान है. हा.

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
5: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
10: तो मुझे समझ में ये आया कि ये आदमी रात को बहुत यार जागता है, ये सारे खराब काम रात को ही करता होगा। ये ना रात को जागना बड़ा खराब कर देता है इंसान को, तुम्हें पता है। चलिए,
11: इन केस यू आर वंडरिंग कि ये क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, तो गाइस पापोन, हु इज लाइक अ रियली रियली पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर, ही रिसेंटली केम आउट विद हिज एल्बम। इट्स कॉल्ड महफिल्स विद पापोन फ्रॉम द लिविंग रूम। इट्स बेसिकली अ लाइव कॉन्सर्ट which was like a living room concert. लोगों के घर में महफिल हुई थी, बैठक जैसे होती है ना हमारे इंडियन क्लासिकल में, उसको बैठक बोलते हैं कि आप किसी के हाउस कॉन्सर्ट करते हैं एंड देन यू आर जस्ट लाइक लिसनिंग टू ब्यूटिफुल इंटीमेट लाइव म्यूजिक। लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होती है, कैरियोके नहीं होता, मतलब एक्चुअल लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड यू आर सिंगिंग एंड यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर वॉचिंग दिस आर्टिस्ट बी वल्नरेबल, क्योंकि एक इंटीमेट कॉन्सर्ट का फील अलग होता है फ्रॉम लाइक अ बिग स्टेज कॉन्सर्ट, यू नो। तो उसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है, बहुत ज़्यादा सोल होता है। तो दिस इज़ पापोन्स न्यू सॉन्ग, इट्स कॉल्ड रातों में। अभी दो दिन पहले ही रिलीज़ हुआ ये। सो द बिगिनिंग ऑफ दैट इज़ बेसिकली ही वॉज बींग इंटरव्यूड एंड इसके बाद ही स्टार्ट सिंगिंग। तो लेट्स लिसन टू द सॉन्ग।

गाइस, जो लास्ट गाना मैंने आपके लिए बजाया, दैट वाज कॉल्ड सुकून है, एंड इट इज एक्चुअली शान्स, इट्स एक्चुअली शान्स ओरिजिनल सॉन्ग फ्रॉम हिज ओन लेबल, एंड इट्स कॉल्ड शान म्यूजिक लेबल, बिकॉज शान इज नाउ डूइंग हिज ओन म्यूजिक एज वेल. तो द वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें वीडियो में पता है क्या दिखाते हैं? वीडियो में दिखाते हैं दैट देर इज दिस पेंटिंग एंड द सेटिंग इज लाइक, इट्स लाइक द मेट, यू नो, द म्यूजियम इन न्यूयॉर्क. अगर आप नहीं गए हैं तो देन यू शुड गो, इट्स ब्यूटिफुल. इंडिया के बहुत आर्टिफैक्ट्स हैं वहाँ पे रखे हुए. आई डोंट नो इफ दे हैव बिन लीगली केप्ट देयर, लाइक बॉट प्रॉपरली एंड केप्ट देयर, और किसी ने चुरा के डाल दिया. एनी वेज, लेट्स नॉट गेट देयर. ठीक है, तो बेसिकली द सेटिंग इज मेट का म्यूजियम है. वहाँ पे एक पेंटिंग है, एक ड्रीम गर्ल है. रात होते ही, इट्स काइंड ऑफ लाइक द नाइट एट द म्यूजियम वाला स्टोरी. वो रात होते ही ड्रीम गर्ल कम्स टू लाइफ, शी कम्स आउट ऑफ द पेंटिंग. वहाँ पे एक जैनिटर है, वो ऐसे झाड़ू पोछा मार रहा होता है. देन दिस ड्रीम गर्ल परस्यूज द जैनिटर एंड देन दे गो ट्रैवल बैक इन टाइम इन टू द 1800s. दैट्स वॉट इट सीम्स लाइक, बिकॉज इट्स लाइक ब्रिजर्टन एंड दे हैव दिस ब्यूटिफुल लव स्टोरी वगैरह वगैरह. फिर वो वापस सुबह हो जाती है, वो वापस पेंटिंग में चली जाती है, और ये जैनिटर है ये वापस अपनी दुनिया में आ जाता है वगैरह वगैरह. तो वीडियो वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बट यू नो व्हाट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज, इट वाज नॉट मेड विथ रियल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. इट वाज अ फुल्ली एआई जनरेटेड म्यूजिक वीडियो. लाइक जैसे एआई जनरेटेड रील्स नहीं आती आपके इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे स्क्रॉल करते बहुत आती है, वैसे ही पूरी एआई जनरेटेड म्यूजिक वीडियो. वाओ, टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई मीन इट्स इनक्रेडिबल. ए आई से आप कितना कुछ कर सकते हो.

Guys, it is 9:50 on the clock, and this is Ippy the Hippie signing off for tonight. भाई ये आज आखिरी बार मेरी आवाज़ सुनेंगे आज आप, उसके बाद मंडे को सुनेंगे. तो मंडे को बहुत सारी बातें लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, लॉट्स ऑफ फन कॉन्वर्सेशन, लॉट्स ऑफ हिप एंड हैपनिंग न्यूज़. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 4th. आप ज़रूर कोई फायरवर्क्स देखिए, हर सिटी में कुछ ना कुछ चल रहा है, वेदर यू आर लिविंग इन Grapevine, या कॉलोनी, या फ्रिस्को, या प्लेनो, एवरी सिटी काउंसिल इज डूइंग सम काइंड ऑफ फायर वर्क शो. मेक श्योर यू गो सी इट. आई एक्चुअली इन पर्टिक्युलर वॉन्ट टू सी द फायर वर्क्स ओवर द लुइसविल लेक, विच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट. तो आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड समवन. मैं किसके साथ जाऊँ, किसी को तो पकड़ लूँगी. लेकिन आप ज़रूर अपने फायर वर्क्स देखिए, अपने अंदर की फायर वर्क को भी जगाइए, क्योंकि अमेरिका का 250वां बर्थडे है. तो यू नो आई थिंक इट शुड बी समथिंग यू नो सिग्निफिकेंट, डोंट यू थिंक सो. तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय. दिस इज इपी द हिपी साइनिंग ऑफ फ्रॉम फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड यू आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डैलस. हैव अ गुड नाइट एंड अ ग्रेट 4th of July weekend.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Rest a while and run a mile with Fun Asia Radio.
1: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
2: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
5: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
4: सच में सब संभालेंगे
5: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
1: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
3: Abey jaldi bol kal subah Panvel nikalna hai
4: Panvel ho ya Dallas safar tabhi mast Jab gaane ho zabardast Only on Panacea Radio
5: Hi this is Kunal Kapoor and you're listening to Panacea Radio

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अकेली है, बुझ गए दिए।
1: सुबह और शाम हर पहर आपके नाम, फनेजा रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
2: बेटा 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

जहनसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम July 3rd to 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे वर्कआउट किया हो आपने। मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: FM turns up the heat in Dallas.
1: मुझे नहीं पता हमारे बीच कब क्या गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे हो गया।

0: सब कुछ सीज कर लो।
1: एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील कर लो। अभी क्या रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज रेसमेंट के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरियां हैं, वो डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
2: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fanesha Radio.

the heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
4: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
5: मैं मस्जिद क्यों जावा, मेरा यार खुदा है।
6: लो जी,
7: बिल्लो।

नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी। मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी। उसे तकते है उम्र गुजारूं,

तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा तू नहीं, एक हार है यार थानेदार का फतवा तू नहीं, अता पता तो बता कोई सुरा बेसुरा।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।
1: आकर

0: आओ आओ आओ आओ आओ
1: मसकली आओ आओ मसकली आओ
2: आओ आओ आ जाओ बच्चा।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अब तेरी बारी।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरफ हूँ।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फनी शो 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
5: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Bring in South Asia closer, more closer. Phoenicia 104.9 FM.

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

The Heartbeat of Dallas, Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: लॉबी मुंडिया, जड़ी टीम जीतूगी उन्हें मेरे वालों पैसे ते बोल्ट ते हार नाला उन्हें मेरे वालों बहुत सारा प्यार।

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
14: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
15: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
14: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
15: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9 4 5

0: 5270897 or visit astrologereeshwar.com.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: Let's go ahead and get started with our program on this lovely Friday morning, ladies and gentlemen. It's the 3rd of July today. सबसे पहले तारीफ सुपर वाले की, जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया, उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम।

0: करने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: समझ नहीं आ रही, टिकट लूं तो कहां से लूं?
3: इट्स लॉसन।
2: किससे बात करूं, सारी जानकारी कौन देगा?
3: इट्स लॉसन।
2: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
4: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
5: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
6: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
1: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
7: मामू, देखो क्या हो गया।
8: ओ, क्या हो गया?
7: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
8: ओए, जर्मन का कमाल है।
7: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
8: ओए, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 9726906623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
9: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
18: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
17: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
19: लुकिंग टू अर्न एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल इनकम और इवन बिल्ड अ न्यू करियर? एट shopcompareinsure.com, वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग कस्टमर्स, वी आर ग्रोइंग अ नेटवर्क ऑफ सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स। व्हेदर यू आर एक्सपीरियंस्ड और जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, we provide the tools, training, mentorship and access to top rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
20: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
21: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: Thank you very much for letting me into your cars and making me a part of your morning. We will get you all the information as well as entertainment that you need right here, right now on the Fun Asia Network. This was the last track of this hour of the program. I'm going to go ahead and change the hour here because as I look at the clock, it is 8 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
7: Ye set sirf shaadi ke liye theek hai. Ye wala bahut heavy hai. Aur ye kab pehna tha last time?
8: To pehenti kyun nahi ho?
7: Kaise pehnu? Ya to heavy ya fir special occasion type.
8: तो रोज वाला ले लो.
9: India's most loved everyday jewelry brand, Karat Lane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Karat Lane now open next to Tanishq in Frisco.
10: Don को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
11: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
12: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
13: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
14: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
15: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
16: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
13: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, इरविंग और गार्लिन में उपलब्ध.
17: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी.
18: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल. फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड. Where every bite is a celebration.
19: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
20: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
21: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, Makini, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
22: Beta, 95% aaye?
23: Haan, mummy.
22: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
24: Mera?

0: प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
1: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi, ab sab kuch milega ek hi jagah, HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer, zaroor dekhiye, HEB ke naye DFW stores, Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jayen aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB, here everything is better.
6: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
3: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
6: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
7: प्लीज डोंट सी यू यूज place again. I'm tired of the same food.
8: Excuse me. It's called being loyal.
7: It's called being predictable.
8: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
7: And what's so special at Neon Cactus?
8: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
7: Not bad.
8: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
7: Okay, this I didn't expect from you.
8: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
9: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
10: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
9: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
10: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
4: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
11: Hello Texas Parivar, क्या आपको पता है there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call कीजिए कामना को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

0: 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
4: हाँ, देख लेंगे।
3: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
4: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
5: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels, वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections, now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
6: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
7: क्या?
6: सैलरी बंद हो जाती है
7: और बिल्स बंद नहीं होते।
6: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
7: मतलब
6: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
8: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route, rerouting, rerouting.
13: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
14: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
13: क्यों?
14: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
13: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
15: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
16: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
17: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस।
18: आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी।
17: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
8: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
19: Aaja meri gaadi mein baith ja.
20: Baith jaun? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
21: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
20: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
22: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
23: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
19: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
24: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
25: Let's get started with this hour of the program. We will have plenty coming up in this hour. You'll will have your world news, and that is set for the 9:30 segment. But right now, some stories from the annals of history that happened on today's date, which is the 3rd of July. On this day in the year 1608, Samuel Champlain founded the city of Quebec, the first permanent European base in Canada. Its splendid views and unique character were noted as early as 1842 during a visit by Charles Dickens, who called Quebec the Gibraltar of North America. Samuel Huntington was born on today's date in 1731, a signer of the Declaration of Independence, president of the Continental Congress and governor of Canada.

0: क्यों नहीं हो?
1: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेजन टाइप,
0: तो रोज वाला ले लो।
2: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
3: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
5: And now at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available. Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
6: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd to 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, where every bite is a celebration.
7: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
8: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
7: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
8: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
10: It's Lawson.
9: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
10: It's Lawson.
9: Daddy, what is the law?
11: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
12: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में डोसा।
5: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
13: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
5: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करें।
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की 4th of July के लिए? हमारी आज एक वॉच पार्टी स्लैश इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, एंड इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक. हम 4:30 बजे शाम को मिलने वाले हैं, एंड देर इज एन इलेबोरेट मेन्यू टू विच आई एम गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट विथ ट्रेस लेचेस केक. और ट्रेस लेचेस केक के बारे में हम सभी जानते हैं, बट डिड यू नो कि ये जो ये 20th सेंचुरी में ना, ये एक ऐसा डिजर्ट हुआ करता था कि जो कि केवल वेल्दी को सर्व किया जाता था. यू नो वॉज कंसिडर्ड अ लग्जरी एंड वॉज सर्व एक्सक्लूसिवली इन प्राइवेट क्लब एंड वेल्दी हाउस होल्ड्स. क्योंकि सोचें आप, द इंग्रीडियंट्स प्रॉबली दे वर एक्सपेंसिव देन. थिंक अबाउट द इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क, हैवी क्रीम, ऑल ऑफ दैट, यू नो टू बी सोक्ड इन स्पंज केक, ऑल ऑफ दैट प्रॉबली महंगा पड़ता था, और इसीलिए ये थोड़ा एलीट के लिए रिजर्व था, जो अब काफी कॉमन है.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Pritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
4: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
3: Sach? Ya phir court decide karega?
4: Wait, what?
2: Yes, agar proper estate plan nahi hai. तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
6: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: Documents या parcel भेजनी है?
10: हाँ।
9: घर relocate करनी है?
10: हाँ।
9: गाड़ी भी transport करना है?
10: हाँ भाई हाँ।
9: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
11: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
12: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं हीरो।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
17: क्या मतलब?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
19: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Funasia Radio.
14: Tracks that put you on the right track.

एंड दैट वॉज आंखें भी होती हैं दिल की जुबान. और ये जो गाना है ये है फिल्म हासिल से, और इसे डायरेक्ट किया था तिग्मांशु धूलिया ने. तिग्मांशु धूलिया सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे एंड इट कुडंट हैव बीन ए बेटर सॉन्ग दैट आई कुड हैव प्लेड फॉर ऑल ऑफ यू रिमेंबरिंग तिग्मांशु धूलिया कंसिडरिंग द काइंड ऑफ फिल्म दैट ही हैज़ गिवन अस. ये उनकी डेब्यू फिल्म थी एज डायरेक्टर, और इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म जो उन्होंने हमें दी हैं, इंक्लूडिंग ऑफकोर्स साहेब बीवी और गैंगस्टर, एंड देन ऑफकोर्स देर वॉज पान सिंह टोमा दैट वन कैन नॉट फॉरगेट. इसके अलावा एक्टिंग भी करते हैं और कमाल की एक्टिंग करते हैं, एंड दैट्स तिग्मांशु धूलिया लेडीज एंड जेंटलमैन हु टर्न्ड 59 टुडे. गोइंग टू अनदर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आर्टिस्ट, एंड वेन आई से ब्यूटिफुल इट इज द वॉइस हियर आई मीन, एंड दैट्स अमित कुमार. ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एज वेल.

And it is going to be hot and sunny with slight chance for a stray shower or thunderstorm, mainly to the east that we are looking at, if there is at all any chance. Baki locations hamare bilkul dry rehne wale hain going into the weekend with highs into the upper 90s that we are looking at. The outlook for tomorrow, 4th of July weekend, calls for more of the same, seasonably hot. Jaisa ki hota hai, waisa hi hai. A great amount of sunshine that we are going to all get. और हाइज हमारे जो है मिड टू अपर 90s में होने वाले हैं. ए स्ट्रे थंडरस्टॉर्म इज पॉसिबल बाय संडे एंड मंडे आफ्टरनून. आज का हाई 97, बट द हीट इंडेक्स इज गोइंग टू मेक इट फील मोर लाइक ट्रिपल डिजिट. और कल का मौसम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मतलब लो भी हमारे 80s में है अब. कैन यू इमेजिन? बट देन वी कैन इमेजिन बिकॉज इट इज डैलस, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पर हम हैं. और इंडिया में भी और एक्चुअली यूरोप में भी गर्मी तगड़ी पड़ रही है. वी हैव नथिंग टू कंप्लेन यार. We are still better off, I feel, right now at this time of the year. एक और बर्थडे सेलिब्रेशन अमित कुमार के सेलिब्रेशन के बाद. दिस इज रोचक कोहली, जिन्होंने हमें कुछ अमेजिंग गाने दिए, स्टार्टिंग विद दिस सॉन्ग दैट ही मेड फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द फिल्म विकी डोनर एंड हम सबके लिए.

0: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha from June 28th through July 4th, 2026. Experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
1: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
2: Excuse me. It's called being loyal.
1: It's called being predictable.
2: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
1: And what's so special at Neon Cactus?
2: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
2: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
2: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: Is शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
0: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
6: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड? रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो. विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121. वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, रेड हॉट चिली पेपर इज डैलस' नंबर वन चॉइस फॉर इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन कुजीन.
7: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया.
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया.
7: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
9: Visit www.sanadainc.com today.
10: जीनी, हुकम मेरे आका. हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
11: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
10: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
11: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
10: और एंटरटेनमेंट,
11: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
10: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
11: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रैंच पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
12: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
13: Tracks that put you on the right track.

फ्रॉम द मूवी एक्शन रीप्ले दैट सॉन्ग वॉज. और एक्शन रीप्ले जो कि गुजराती एक प्ले से इंस्पायर्ड अपेरेंटली हुआ था, दैट इज वॉट द डिरेक्टर ऑफ द फिल्म सेड, विजू शाह. ही सेड दैट यू नो दैट ही वॉज इंस्पायर्ड ऑफ दिस गुजराती प्ले, लेकिन possibly they both were actually inspired of the film Back to the Future. Or Back to the Future, jo Michael J. Fox ki jo ye film thi, it was a super duper hit. And unlike Back to the Future, action replay kuch kamal nahi kar pai thi at the box office, but that doesn't matter right now. What matters is Back to the Future, that movie that came out in the year 1985, that science fiction film jo itni achhi chali thi ki matlab aaj bhi log aise cult classic, that film is for sure for the generations. And aaj hi ke din release hui thi, July 3rd ko, ladies and gentlemen, and that is what I wanted to mention here for all of you. You are listening to Gupshup Gali with me too. और इस segment में कुछ ऐसे फिल्मों के गाने सुनवाते हैं जो आज ही के दिन रिलीज हुई हो. तो अगर बॉलीवुड स्पेस में वापस जाऊं तो एक और फिल्म का नाम यहाँ पे लेना चाहती हूँ, विच डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन देयर वर सम नाइस सॉन्ग्स इन द फिल्म. और फिल्म थी एक्शन ब्लैक कॉमेडी, सुभाष कपूर की डायरेक्टोरियल, गुड्डू रंगीला, जिसमें ना एक्टर्स बड़े अच्छे थे. इट वॉज अरशद वारसी, अमित शाह एंड अदिति राव हैदरी. And उस फिल्म का ये गाना सुने क्योंकि आज एक दिन इन द ईयर 2015 दैट इट रिलीज्ड. सी, ऐसे ना हमें मौका भी मिलता है कुछ सुने अनसुने गाने जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनमें से ही समझ लें, ये भी एक है. आई होप यू लाइक इट.

you know what? You need an eye for the right composers if you are making a film, right? क्योंकि वो एक deal maker या breaker हो सकता है, क्योंकि हिंदी फिल्मों में हमारे, देसी फिल्मों में हमारे, music plays a very very important role. और ऐसे में अमित त्रिवेदी being at the helm of गुड्डू रंगीला for the music was definitely a good choice. वैसे अमित त्रिवेदी मुझे लगता है कि वो किसी भी स्पेस में आराम से ढल सकते हैं, एंड दैट्स हिज मैजिक. एंड द मैजिक ऑफ अर्शद वारसी की वो जिस भी रोल में आते हैं ना, सच्ची अपना बना लेते हैं. एंड दैट इज वाई गेट रेडी टू वॉच दिस वन, जो कि आज ही रिलीज होने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पे. एंड दिस इज कॉल्ड प्रीतम एंड पेड्रो, एंड दिस इज फिल्म मेकर राजकुमार हिरानीज डिजिटल डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर. और उनके बेटे जो हैं वीर हिरानी, ही इज गोइंग टू स्टार एज प्रीतम, और पेड्रो का काम करने वाले हैं अर्शद वारसी. ये जो फिल्म है, इट इज सेट इन गोवा एंड इट्स अ क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फॉलोइंग ए सीजन ओल्ड स्कूल कॉप, जो कि अर्शद वारसी जो पेड्रो का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, एंड टेक सावी हैकर विक्रांत मासी. ये दोनों को एक साथ यू नो कंबाइन किया जाता है टू सॉल्व दिस साइबर क्रिमिनल केस दैट हैज टू ट्रैक द साइबर क्रिमिनल. एंड दिस आई थिंक आई फील द साइबर क्रिमिनल इज वीर हिरानी. ही इज प्लेइंग प्रीतम पार्कर इन दिस मूव इन दिस सीरीज एक्चुअली, विच इज कॉल्ड प्रीतम एंड पेड्रो, विच इज स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार. जस्ट FYI, उसका एक गाना बड़ा अच्छा सा लगा, माफी, दैट इज वॉट आई एम गोना प्ले फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ. श्रेया घोषाल की आवाज है इस गाने के लिए, एंड शांतनु मोइत्रो उनका म्यूजिक.

प्रीतम एंड पेड्रो का ये गाना आप सुन रहे थे एंड इट इज स्ट्रीमिंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार। आप में से शायद कुछ देख पाएंगे लेकिन इंतजार कीजिए, आई एम श्योर वील प्रॉबेबली गेट इट इन अनदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो होपफुली। ऑलराइट, एक जो चल रही है थिएटर्स में जो आज ही रिलीज हुई है, इसका नाम है अल्फा, द सेवेंथ फिल्म इन द वायरफ स्पाई यूनिवर्स, डायरेक्टेड बाय शिव रवेल। आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन दिस वन, दे हैव टीम्ड अप। और आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है और जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है उसकी बड़ी तारीफें हो रही हैं, और बाकी जो है वो जाने दीजिए क्योंकि नई फिल्म है, मुझे लगता है कि खुद जज कीजिए आप। बेबी डू डाई डू और डाई और इसे डू डाई डू आई डोंट नो एक्चुअली। It is a Huma Qureshi film which has also made a landfall at the theatres. A quirky madcap action comedy film जिसमें वो hit woman का किरदार निभा रही हैं, देसी hit woman Huma Qureshi in this one alongside Chunky Pandey and others. और ये कुछ फिल्में हैं जो कि आज आप देख सकते हैं at your nearest theatres, ladies and gentlemen. लेकिन एक और गाना मुझे play करना था because it belongs to this classic crime film directed by Ram Gopal वर्मा जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, सत्या।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
4: हाँ, देख लेंगे।
3: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
4: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
5: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
6: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड,

0: H3 Eatery?
1: No, not another restaurant again.
0: Dude, it's Pagetree. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
1: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
2: Pagetree Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: Hey maps, take me to my desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
13: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
14: Aaja meri gaadi mein baith ja.
15: Baith jaun? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
16: Wo thoda overheating tha.
15: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
18: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
19: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
20: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
19: Kya matlab?
20: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
19: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
20: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
19: Ab to karna hi padega, madam.
21: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

0: Benefits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
3: That's right, that 30% discount for you, Vishal Shekhar का जो concert 12 जुलाई को आ रहा है. मैंने अपनी tickets खरीद ली हैं. आप बताइए, आपने अपनी रिजर्व की कि नहीं? क्योंकि if you really want good seats, go for it now. और ये मेरा friendly advice है आपको कि जल्द से जल्द cashpatelproductions.com पे जाके आप अपनी tickets खरीद लो, because it is going to be a full house very very soon. I can assure you that. Vishal Shekhar in concert live for all of us on 12th of July at the Curtis कलविल सेंटर इन गार्लैंड. और अगले सेगमेंट में मेरे पास आपके लिए एक फ्री गिव अवे है, दैट कॉन्सर्ट टिकट दैट आई कैन गिव यू, एंड दैट्स कमिंग अप इन द नेक्स्ट सेगमेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गपशप गली.

आप अपना पहला घर खरीद रहे हो या रीफाइनेंस करवा रहे हो, इन एनी केस ड्रीम होम मॉर्गेज कैन बी ए बिग हेल्प टू यू. और हैप्पी वैप्पी होने का रीज़न मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्लोज टू 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव, आप ऑब्वियसली बहुत सेफ हैंड्स में होंगे अगर आप इनके साथ जुड़ते हो. फॉर दैट स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस एंड एब्सोल्युटली दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट स्मूथ प्रोसेस दैट दे हैव फॉर यू. तो आप उनसे बात करें, आपके पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस उनके पास हैं, ज़रूर जाके उनसे बात करें. एंड यू नो व्हाट, गेट इन टच विद देम एज सून एज पॉसिबल सो दैट दे कैन गाइड यू थ्रू. कि अगर आप अगले 6 महीने में, आने वाले साल में, यू नो यू आर प्लानिंग टू बाय अ होम, देर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टू फॉल ऑन ट्रैक इन ऑर्डर टू बाय न्यू होम. सो इसीलिए आप सारा कुछ उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म करें टू फिगर आउट द राइट सोल्यूशन फॉर यू. गेट इन टच विद देम वंस अगेन, इट्स ड्रीम होम मॉर्गेज के हुसैन पंजवानी साहब, जो मेरे शो पे आते हैं 10:30 बजे मंडेज को इन द मॉर्निंग. एंड यू कैन लिसन टू ऑल दैट ही ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ एडवाइस. और बहुत सारी एडवाइसेस एकदम लेमैन लैंग्वेज में लेकर आते हैं कि आपका और हमारा समझना आसान हो जाता है. क्योंकि अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, इट इज़ ओवरवेलमिंग एंड देर इज़ नो टू डाउट अबाउट दैट. और उसी को आसान बनाते हैं हुसैन पंजवानी एंड हिज ड्रीम टीम. 9722455626 इज दैट नंबर. dreamhomemortgage.com है इनकी वेबसाइट. यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली विथ मी टू.

वंस अगेन विशाल शेखर का म्यूजिक है इस गाने के लिए. 12th जुलाई को दिया परफॉर्मिंग फन एशिया अगर कोड यूज करते हैं तो 30% आपको डिस्काउंट मिलता है. cashpatelproductions.com इज वेयर यू कैन बाय योर टिकट. लेकिन किसी एक को मिलने वाला है फ्री कॉन्सर्ट टिकट, और वो टिकट गिव अवे जो है वो अगले सेगमेंट में है आपके लिए. आई थॉट आई गिव यू दिस हेड्स अप इन दिस सेगमेंट इटसेल्फ. और इस सेगमेंट में मेरे पास आपके लिए एक गिव अवे है, एंड दैट गिव अवे इज फ्रॉम पंचतारा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां से आपको मिल सकता है आलू कुलचा या तो फिर छोले भटूरे बिल्कुल फ्री. तो बने रहे मेरे साथ, बिकॉज एक बहुत ही सिंपल सवाल है. और सवाल तो क्या, मतलब इसका कोई सही गलत जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि जब ऐसे लॉन्ग वीकेंड आए और थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले अपनी फैमिली के साथ, तो कहानियाँ ज़रूर शेयर करें. क्योंकि बच्चों को बड़ा मज़ा आता है कि आपने अपने बचपन में क्या करामात किए हैं, या आपके पेरेंट्स ने, या उस ज़माने में क्या हुआ करता था. ये सारी कहानियाँ ना, दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड they are so exciting for the next generation to know, to just feel what you felt, you know. Wo sari kahaniyan share zarur kijiye and encourage your children to also share their stories, to become part of their lives most memorably that you can become, you know. Just wo jo hota na subah se sham hamare jo din katte hain uske alawa bhi beyond that in their schools, between their friends, they have a life and there are stories that they share and they make and let's become part of that. So storytelling, ye hai hamara aaj ka theme. To mujhe isi par aapse kuch puchna tha. In just a bit I'm going to get that for you. एंड बाकी रही बात आपकी रिक्वेस्ट की, 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर आप जानते हो, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू कम हैंडी अगर आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हो और गिव अवे का हिस्सा बनना चाहते हैं. दिस इज गपशप गली विथ मी टू

टांकना और झांकना, वो आपकी जो कहानियां जो लेकर आते हैं ना, आप अपने साथ जो लेकर चलते हैं वो कहानियां लोगों के साथ शेयर करें। जब आप आपकी बैठक होती है ना आपके घर में या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो उनके साथ बहुत सारी कहानियां शेयर करें यार। दैट इज़ यू नो कनेक्टिंग जेनरेशंस, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ सो अमेजिंग, जिसके बारे में हम थोड़े से और बात करेंगे एंड इट माइट स्पिल इन टू द नेक्स्ट सेगमेंट इज वेल। जैसे कि मुझे लग रहा है घड़ी की कांटे को देखते हुए कि इट इज 23 मिनट्स पास्ट 11। इफ वी आर नॉट एबल टू वाइंड अप दिस सेगमेंट इटसेल्फ, देन हम अगले सेगमेंट तक इस सवाल को लेकर जाएंगे आप लोगों के लिए, जस्ट सो दैट यू शेयर मोर एंड मोर स्टोरीज दिस लॉन्ग वीकेंड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑलराइट, थैंक यू रजिया फॉर कॉलिंग इन एंड शेयरिंग योर क्रेजी लिटिल स्टोरी। मजा आया बहुत सुन के, और जी हाँ, मैं भी आपकी कहानी का हिस्सा बन गई अब तो। यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू। यहाँ पे एक जो ये विजन है मेरा कि इस वीकेंड बहुत सारी कहानियाँ शेयर करें, उसके लिए क्लैरिटी की ज़रूरत है, और वो क्लैरिटी बस ये होनी चाहिए कि ये जो कहानियाँ हैं ना आप जो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हो, दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ सो ब्यूटिफुली दैट इट गोज ऑन फॉर जेनरेशंस। यू नो, इस हैबिट को बहुत अच्छे से कल्टिवेट करें और इवॉल्व करें विथ टाइम। और यहाँ पर ये जो विजन मैं लेकर आई हूँ, होपफुली आप इसका हिस्सा बने। फिलहाल जो बताने वाली हूँ, इट इज़ टू डू विद डॉक्टर शहजाद बाटली वाला, जो आपकी विजन लिटरली बिल्कुल 2020 कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू नीड टू गेट इन टच विद देम। देयर वेबसाइट इज LASIK-Plano.com। यू मस्ट रिमेंबर कि आप जब यू नो आई साइट करेक्शन के लिए जाते हैं, या तो आप ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हों, तो आपके लिए कई सारे और ऑप्शंस हैं। इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भले आप किसी भी एज ब्रैकेट में आते हों, चाहे आप यू नो 18 प्लस यू नो यू आर एंड यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग रीड ऑफ दोज कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड ग्लासेज, तो आपके लिए ऑप्शन है। अगर आपकी एज के साथ विजन चेंज हो रही है और आप 20/20 विजन चाहते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन हैं। इफ़ यू आर 65 प्लस एंड कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं आप, आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टू रियली फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट ऑप्शन फॉर यू, एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट, एंड दैट्स वॉट एग्जैक्टली दे डू एट विजनरी आई केयर। डू रिमेंबर, इट इज इन प्लेनो एंड द नंबर टू कॉल इज 214-972-2020। एंड गेस वॉट, डू नॉट फर्गेट टू मैंशन फन एशिया 2020 टू रिसीव ए फ्री कंसल्टेशन। दिस इज गपशप गली विद मी टू, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड वील कंटिन्यू दिस टॉपिक इन गोइंग इन टू द नेक्स्ट सेगमेंट एज वेल।

0: This part of my show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firm in the US. और चाहे जो ब्रॉड एरे ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप टैक्स प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, बुक कीपिंग के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस यू आर सीकिंग एंड एडवाइजरी फंक्शंस, इफ इट इज एग्जैक्टली दैट, देन गो फॉर इट टू इंडिविजुअल्स, रिटेल्स एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंटेल दैट दे हेल्प, एंड मेक श्योर दैट यू गेट इन टच विद देम. agfintechs.com पे सारी जानकारी है. अगर आप फोन पे अभी एक्टिव हैं और नंबर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, 4699429888. अनिल ग्रांधी एंड हिज टीम, एन अकम्पलिश फाइनेंशियल एक्सपर्ट दैट ही इज विद अ प्रोवन पोर्टफोलियो. एजी फिनटैक्स इज सपोर्टेड बाय अ प्रोफेशनल टीम ऑफ टैक्स स्पेशलिस्ट, CMAs and other financial experts. So get in touch with them. Once again, agfintechs.com is the website that you must visit and connect with them right away. Well, connect with me in a bit. वापस आती हूँ.
1: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
2: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
4: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
5: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
6: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or five rings. Dine in only.
7: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
13: Tracks that put you on the right track.

दिल अगर आपका बेचारा परेशान है, काम के बोझ से दबा हुआ है, तो उसे खुल के जिए। इस वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड मुबारक हो आप सभी को। योर टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इज़ प्रेशियस, एंड आई वुड लाइक टू नो समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्योंकि कहानियों के बारे में बातें हो रही थी कि भाई कहानियाँ खूब से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। द ईयर्स दैट यू हैव स्पेंट वर्किंग हियर, आपका US में आने के बाद एक्सपीरियंस, आपका बचपन का एक्सपीरियंस, कहानियाँ अलग अलग किस्म की हो सकती हैं, राइट? क्योंकि हमारी जिंदगियाँ इतनी लंबी, गॉड्स ब्लेसिंग हुई है कि हम बहुत सारी एक्सपीरियंसेस जिए हैं। उन एक्सपीरियंसेस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ ऑलवेज लवली टू कम टुगेदर टू शेयर स्टोरीज, और इससे बेहतर टाइम क्या ही मिलेगा कि आपका दिल बेचारा जो आप आराम कर रहा है लॉन्ग वीकेंड पे, उसको कहानियों से आप एक्साइट करो, और उसको कहानियों से एक नई जिंदगी दो यार। सीरियसली, दैट इज़ वॉट आर दिल बेचारा नीड्स। सी, कहानियाँ सुनने में, देखने में या पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, नहीं? और अगर रियल लाइफ स्टोरीज हो तो उनका मज़ा ही कुछ अलग लेवल का होता है। हमारे पेरेंट्स ले लीजिए, हमारे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, और हमारी लाइफ के जितने भी सीनियर्स हैं, मान लीजिए इनके पास इतनी सारी कहानियाँ होती, पूरा ट्रेजर चेस्ट होता है इनके पास, और उनके अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस, उनकी यादें, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। दे आर ए टेंजिबल कनेक्शन बिटवीन पीपल, बिटवीन डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड बिटवीन डिफरेंट टाइम्स एंड जनरेशंस। मानते हैं कि नहीं, जब लाइफ में कभी कोई मुश्किल आती है ना, कभी कभी ये कहानियाँ हमें सही रास्ता दिखा देती है, एक क्विक रिसोर्स बन जाती है हमारे लिए, माने ना माने, यू नो, बिकॉज दे आर इन आर माइंड्स, दे आर समवेयर, दे फाइंड ए कॉर्नर इन आर हार्ट्स। ऑफकोर्स आज की तारीख में गूगल है, सोशल मीडिया है, सर्च इंजन्स है कि हम उन लोगों की स्टोरीज भी ढूंढ लेते हैं जिनको हम कभी मिले ही नहीं, जिनको हम जानते तक नहीं हैं। आज हम बिल्कुल सॉर्ट ऑफ ऐसे ऐसे ही कुछ बातें करने वाले हैं, ऐसे ही स्टोरी टेलर्स जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के बीच हैं, उनका बस नाम लेना चाहते हैं, टू मोर पावर टू देम, कि वो ऐसी कहानियाँ हमारे साथ शेयर करते रहें। फॉर इंस्टेंस, मेरे फादर इन लॉ, ही वॉज सच ए ग्रेट स्टोरी टेलर कि ना, मतलब जनता ऐसे, मतलब होता है ना, जैसे हाथ अपने गाल पे रख के अच्छे से आराम से उनकी कहानियाँ, वो जिस तरह से एक एक लाइन वो बोलते थे ना, वो वैसे वैसे एक इमेज तैयार हो जाता था उस सिचुएशन का, उस कहानी के लिए। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलर्स। तो आपके फैमिली में स्टोरी टेलर कौन है? लेट्स गिव देम अ बिग शाउट आउट। हाउ अबाउट दैट? दैट्स ऑल आई वॉन्ट यू टू टेल मी। पंचतारा रेस्टोरेंट की तरफ से आलू कुलचे या फिर छोले भटूरे आपके, कि खाना खाते खाते मस्त होके जो वो गप्पे करते हैं ना, कोई कोई इंसान इतने अच्छे से कहानियाँ बताते हैं कि मज़ा आ जाता है। सो दिस गिव अवे फॉर वन ऑफ यू, इफ़ यू कॉल मी एंड टेल मी हु इज दैट स्टोरी टेलर इन योर फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स में या फैमिली में। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू नो। 972-235-5555।

0: ऑल ऑफ अस हैव दैट वन स्टोरी टेलर इन आवर फैमिली और फ्रेंड सर्कल जो मतलब माहौल जमा देते हैं, लोग उनके आसपास बैठ के कहानी सुनना चाहते हैं. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में वो स्टोरी टेलर कौन है जो ऐसी इंटरेस्टिंग तरीके से कहानियां बताता है अपनी लाइफ की या किसी और की लाइफ की, मतलब रियल लाइफ स्टोरीज जो वो शेयर करते हैं कि वो आपके साथ हमेशा रह जाती हैं. वेल राबिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नानू स्टोरी कि उनके आसपास कैसे बच्चे वो सारी कहानियां सुनने बैठ जाया करते थे. राइट, वो एक जो सीन है ना वो दिमाग से आप हटा नहीं सकते कि जिस इंटरेस्ट से छोटा बड़ा सब बैठ के एक साथ बैठ के कहानियां सुन रहे होते हैं. राइट, तो क्या है ना कि टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क जो है हमारा इतना स्प्रेड आउट है कि आजकल हम अनजान लोगों की कहानियां भी, रियल लाइफ स्टोरीज भी हमें पता चलती रहती हैं. लेकिन ये जो नेटवर्क है ये पहले कहाँ था? ये कहानियां हमें डायरेक्टली उन लोगों से पता चलती थी. राइट, तब लोग अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को गैदर करके अपने आसपास के लोगों से और किताबों से ये सारी कहानियां, वो बताने का तरीका एंड ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू बी सो नॉवल. इट्स सच एन अमेजिंग वे टू स्टे इंटरकनेक्टेड थ्रू टाइम एंड लाइफ एज सच, वुडंट यू से? यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो,
0: हाय अनी, थैंक यू फॉर होल्डिंग द लाइन एंड टेल मी आपकी फैमिली में, आपकी फ्रेंड सर्कल में कौन है वो स्टोरी टेलर जो कि मतलब अच्छे से जमा के कहानी सुनाती हैं?
1: माय वेरी गुड फ्रेंड लिडिया, शी इज डेडिकेटेड टू हर, शी लिव्स इन कनाडा एंड वो इतना अच्छा बताती है टीचरों के बारे में. हर एक टीचर जो आके उसकी नकल उड़ाती है कि ऐसा बन के यू नो द वे दे एक्सप्रेस यू नो लेसन प्लान. और जब भी लंच के बाद जो सोशल स्टडीज की क्लास होती है इतनी मस्त नींद आती है हम लोगों को. इवन तो हम लोग नीचे जाके टेबल चेयर रहता है मगर बैक बेंचर्स के लिए वो टीचर आगे लेती है, आगे लेके नीचे बैठते हैं और इतनी अच्छी नींद आती है हम लोगों को एक दूसरे से. और फर्स्ट पीरियड मैथमेटिक्स एवरी डे मैं ही फंसती हूँ. आई डोंट नो मेरा चेहरा ब्राइट है या क्या, पता नहीं, मैं ही फंसती हूँ और मेरी दोस्त जो है पीछे से आंसर देती है. ये वाला है
0: ये मुझे बिल्कुल थ्री इडियट्स वाला माहौल लग रहा है यहाँ पर. थैंक यू सो मच अनी फॉर शेयरिंग एंड बिग शाउट आउट टू लिडिया एंड पीपल लाइक हर जो कि इस कहानियां इतने इतने मजे में सुनाते हैं कि दे ऑलवेज आर गोइंग टू स्टे विद अस. थैंक यू, सो होल्ड द लाइन फॉर मी.
1: थैंक यू,
0: क्योंकि पंचतारा की तरफ से आपके लिए है फ्री आलू कुल्चा या छोले भटूरे. कंग्रेचुलेशंस.
1: थैंक यू.
0: एंड यस, ये कहानियाँ जो शेयर करने की बात है ना, ये कितनी कमाल की बात है. तो एक ब्राइट सजेशन बड़ा सिंपल सा है आप लोगों के लिए कि अपने अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड्स, इन सब की पर्सनल एनेक्डोट्स और यादों को ना नोट कीजिए अपने माइंड में, अपनी डायरी में या फोन में, जहाँ भी आपको ठीक लगे रिकॉर्ड कर लीजिए. यू नो दीज आर सच प्रेशियस थिंग्स. और हाँ, केवल सुनिएगा नहीं, अपनी स्टोरीज भी कहिएगा. जी हाँ, अपने अच्छे और बुरे दिन अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर खर्च कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और ख़ासकर बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. उनके बचपन से लेकर आज के दिन तक की कहानियाँ भी उनके साथ शेयर करिएगा. इट्स सच अ ब्यूटिफुल वे टू स्टे कनेक्टेड एंड पास इट टू द जेनरेशंस, क्योंकि कहानियाँ लोगों को लोगों से जोड़ती हैं यार. ये एक जेनरेशन को दूसरी जेनरेशन से कनेक्ट करती हैं एंड इट इज बाय फार द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेसिबल वे जिससे लोग कंपैशनेट बनते हैं. बिना किसी एडवर्स सिचुएशन से गुजरते हुए एक दर्द को समझने की कैपेसिटी रखते हैं. यू नो कहानियों से हम लोग अपने लोगों के बारे में, उनके वैल्यूज, उनकी विजडम, उनकी सोच, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं. जी हाँ, कहानियाँ खुद में एक पूरी अपनी दुनिया होती है. सो यस, कीप शेयरिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं आती हूं वापस इन जस्ट अ बिट विथ अनदर स्टुपेंडस गिव अवे फॉर ऑल ऑफ यू. तब तक तेरी मेरी कहानी से ये गाना सुन ले.

0: ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पर आप लोगों के लिए एक कॉन्सर्ट टिकट गिव अवे है. और मैं अगर आपसे कहूं कि विशाल शेखर कॉन्सर्ट के लिए आपके लिए सिर्फ नहीं, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड या जिसको भी आप साथ में लेकर जाना चाहते हैं उनके लिए भी फ्री टिकट है मेरे पास, तो कैसा लगा आपको सुन के? और अगर अच्छा लगा तो मुझे आपको देने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा. ऑल यू हैव टू डू इज क्रैक द सॉन्ग टाइटल्स इन द शायरी दैट आई एम गोइंग टू से. ठीक है, विशाल शेखर के ही सारे गाने हैं जो इस शायरी में होने वाले हैं. चार सॉन्ग टाइटल हैं इसमें, और जो भी मुझे पहला वो बताएगा, जो चारों गाने जो गेस कर पाएंगे उनको मिलेगा ये दो टिकट्स फॉर दिस कॉन्सर्ट हैपनिंग ऑन संडे जुलाई 12th. एंड इट इज एट कर्टिस कलविल सेंटर. विशाल शेखर विल बी लाइव इन कॉन्सर्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, आग लगाने वाले हैं स्टेज में. और आप लोगों के लिए ये टू टिकट्स दैट आई हैव फॉर दिस वन विनर दैट वी आर गोइंग टू गेट. ऑलराइट, और बाकियों के लिए कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम पर जाके आप अपनी टिकट्स जरूर खरीद लीजिएगा, जल्द से जल्द खरीद लीजिएगा. और फनीशा कोड यूज करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि 30% डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा. ऑलराइट, और अभी किसी को मिलेगा दोस टू टिकट्स वन विनर दैट वी आर गिविंग इट अवे टू. सो 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. यस, टेल मी, अगर ये शायरी है इसमें वो चार सॉन्ग टाइटल कौन से हैं जो विशाल शेखर के कॉम्पोज किए हुए हैं? ठीक है, तो गौर फरमाए. अर्ज किया है, अनजाना अनजानी बनकर मिले थे हम, अनजाना अनजानी बनकर मिले थे हम, पर किस्मत ने रंग दिखाया है, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, आज इस बात पर यकीन आया है, ये कुर्बान हुआ दिल अब बस आप ही की राह तकते हुए, ये कुर्बान हुआ दिल अब बस आप ही की राह तकता है, क्योंकि अब तो इस दिल को बस आपकी ही अजब सी अदाओं ने घेरा है. वाह वाह वाह वाह, क्या बात है. चार फिल्मों के नाम दैट आई एम लुकिंग फॉर इन दिस वन. लेट्स सी इफ समबडी कैन फिगर इट आउट राइट अवे. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो,
0: हाय, व्हाट्स योर नेम?
1: निकुंज.
0: निकुंज, बताइए. निकुंज से मुझे ना वो तारे जमीन पर याद आ गया. बट यस, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. बताइए वो चार गानों के टाइटल कंपोज्ड बाय विशाल शेखर.
1: अनजाना अनजानी,
0: करेक्ट.
1: रणबीर, देन जग घूमिया तारे जैसा ना कोई,
0: करेक्ट.
1: अजब सी अजब सी, एंड और एक
0: और था. उफ, यू आर सो क्लोज निकुंज.
1: किस्मत कुर्बान हुआ.
0: Absolutely. तालियां तालियां तालियां. निकुंज, आपको मिलता है दो टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट. कंग्रेचुलेशन, एकदम मुफ्त. हाउ डज इट फील?
1: It's really good. Thank you so much for that.
0: Absolutely. और मैं बता सकती हूँ कि मैं कहानियों की बात कर रही थी ना, कि आपके लाइफ की कहानी में ना ये एक डेफिनेटली एक पीक मोमेंट रहेगा आपका जुलाई 12th का दिन, जुलाई 12th 2026. वेल, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल एंड गिविंग मी ऑल द राइट आंसर्स. होल्ड करें लाइन और मैं आपकी सारी डिटेल्स लेने वाली हूँ ऑफ एयर. थैंक यू. और अनजाना अनजानी विशाल शेखर कॉम्पोजिशन दैट वी आर गोइंग टू स्लिप इन टू.

0: 4664666259।
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
8: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
9: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
8: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
10: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
13: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
14: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
15: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
18: Tracks that put you on the right track.

दिलो जान से जो फीफा को फॉलो कर रहे हैं, ये सेगमेंट उनके लिए वेरी वेरी स्पेशली. दिस इज द फीफा फीवर सेगमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन माय शो जिसका नाम है गपशप गली. और क्या है ना कि फीफा के फैंस जो हैं, इंटेंस स्ट्रेस और कंबाइंड विथ यू नो दिस एक्सट्रीम समर टेम्परेचर्स दैट दे आर फेसिंग, मेनी ऑफ देम आर नॉट इवन यूज टू विथ सच हाई टेम्परेचर्स. तो सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज हो रहा है वर्ल्ड कप फैंस के साथ. और इसी के चलते फिर एक बार एक रिमाइंडर्स जो भी सुन रहे हैं, डिहाइड्रेशन इज द मेन कंसर्न. और उसके अलावा सिवियर कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस भी जो देखने को हमें मिल रहा है. टॉकिंग अबाउट विच, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज शुड बी योर डेस्टिनेशन इफ यू हैव एनी हेल्थ कंसर्न्स, या आप यू नो ईयरली चेकअप्स का जो सिलसिला है वो बहुत स्मूथ रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको वो पूरा वक्त मिले जो आपको मिलना चाहिए. तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज द डेस्टिनेशन फॉर यू. सेम डे अपॉइंटमेंट आप लोगों को मिल जाती है. मल्टी डिसिप्लिनरी टीम दैट दे हैव ऑल अंडर वन रूफ. दिस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर यू, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली. सब तक ये बातें पहुंचाएं आप. और फॉर द लिसनर्स जिनमें प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और शायद आप आज छुट्टी पे भी हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दैट अवेट्स एट देयर्स. आप ज़रूर जाएं पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com पे. यू ड्रॉप एन ईमेल टू देम विथ योर रेज्यूमे और टेक्स्ट देम एट 2174544639 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. एंड फॉर एवरीबडी एल्स इट इज़ passionhealthphysicians.com और कॉल और टेक्स at 214-666-6259. Now that being said, let's rock and roll with the games that are to happen today, ladies and gentlemen. Three major games that are to happen. Ek jo 1 baje shuru hoga in our own, very own Dallas Stadium, and that is going to be Australia versus Egypt. And Egypt is the clear favorite to win this match. Lekin Australia ka defense bahut solid hai. Let's not forget Mohamed Salah in top form, or Egypt has that upper hand. You have to remember that. We'll talk about the most awaited match of the day, which is to happen at 5 PM in just a bit. लेकिन उसके पहले रात को होने वाले इस गेम के बारे में बात कर लेते हैं. 8:30 पे कोलंबिया फेसेस घाना एट एरोहेड स्टेडियम इन कैंसस सिटी. ग्रुप स्टेज में सिर्फ एक गोल कंसीड करने के बाद कोलंबिया इज द क्लियर फेवरेट टू एडवांस इन द राउंड ऑफ 16 फॉर दिस मैच. विल फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. 5 बजे के गेम के लिए सुपर एक्साइटेड हैं हमारे फ्रेंड्स. और एक वॉच पार्टी जो रखी गई है एक फ्रेंड के घर में, दैट is what I'm going to talk right after this song. This is Gapshap Gali with me too.

You are tuned into Gupshup Gali with me too, and I need to talk about the 5 PM match. That is what me and my friends are gathering for. Watch party होने वाली है. और मैंने बताया ना कि मैं Tress Lecher's केक बहुत मैंने सर्वे किया, बहुत लोगों से पूछा, और उसके बाद मुझे फाइनली जो जगह मिली है वो मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ Tress Lecher's. बट येस, आई डू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस 5 PM मैच. फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने चरम के दिनों पर पहुंच रहा है. This is round of 32 that is going on. और सबसे बड़ा dramatic encounter आज रात को मेरे ख्याल से होने वाला है. We can say that this is going to be a face off between Argentina and Cape Verde. और ये knockout match है जो कि आप जानते हो कि do or die है. जो भी team जीतेगी वो round of 16 में जाने वाली है. And it is officially the biggest mismatch the World Cup has ever seen. एक तरफ है 3-time world champions, current world rank number 2 that we are talking about, और arguably the greatest player of all time, Messi, जो है वो खेलने वाले हैं for Argentina, और दूसरी तरफ this tiny island called Cape Verde, जो अपना world cup debut जिन्होंने किया है 2026 के साथ, उनका इस मुकाम तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत कमाल की बात है. और इसीलिए केप वर्दे के लिए बहुत लोग एक्चुअली यू नो प्रे कर रहे हैं कि वो जीत जाएं, क्योंकि दे हैव कम दिस फार. दे वांट देम टू गो अ लिटिल फर्दर इन द वर्ल्ड कप सीरीज दैट इज बीइंग प्लेड. और यस, ये बहुत छोटा सा एक कंट्री है. 530,000 about the figure, correct me if I'm wrong on that, but smaller than every single US state that you can imagine. Or ye jo smallest country that has made football history to ever reach the World Cup knockout rounds. Can you imagine that? The real drama jo chalne wala hai aaj shuru hoga 5 PM pe. I am super excited about this. And that face off between Messi and their goalkeeper, that is something to see. Vozinia, that I'll be looking out for. Rooting for both the teams. Jo bhi team haarti hai na, honestly, US team ke alawa baki jo bhi टीम हारती है दूसरे मैचेस में ना, मुझे उनके लिए बड़ा अफसोस होता है. ऑनेस्टली वो ऐसे लटके हुए चेहरे ना देखे नहीं जाते सच्ची. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

पल दो पल का जो आपका साथ रहता है हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इन आई डू वॉन्ट टू से दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आर हार्ट्स कि आप लोग सब जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो ही तो ये हमारा शो कुछ अलग निखर के आता है. बिकॉज आई टेल यू दिस कि हम सारे आर्टिस्ट जो रोज़ आते हैं, हमारे पास वही बातें हैं, वही कहानियाँ हैं, वही गाने हैं, बट वेन द इनपुट कम्स फ्रॉम यू ना, आप लोगों का जब कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो बनता है कुछ शो हर दिन अलग. एंड कल का दिन वाकई में बहुत अलग है. कल 4th of July है एंड दिस इजंट जस्ट एनी इंडिपेंडेंस डे. अमेरिका इज सेलिब्रेटिंग ए मैसिव माइलस्टोन, लेडीज एंड जेंटलमैन, 250 इयर्स ऑफ इट्स इनक्रेडिबल जर्नी, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी का ये हसीन सफर. और जब हम यहाँ डैलस फोर्ट वर्थ में बैठकर इस माइलस्टोन को देखते हैं ना, तो दिल से एक बात आती है. सच्ची में थिंक अबाउट इट, What does the 4th of July mean to you, to me, the Desi community, I mean? America brought us into its life. Isme to koi shak nahi. Aur hamari hard work, hamara culture and love became a sort of a tangible connection that keeps us beautifully interconnected through time, if I may say. Kitne bhi utar chadav aaye, keep this belief very strong within you that we are interwoven in the fabric and culture of this country. And most importantly, we are now part of their story as well. So make sure we respect it and respect it beautifully. हम में से बहुत सारे लोग सालों पहले आए हैं और कुछ शायद काफ़ी रिसेंटली आए होंगे. हाथों में बड़े बड़े सपने लेकर, दिल में थोड़ी सी घबराहट भी और बहुत सारा जोश हमारे दिलों में है ना. एंड टुडे वेदर वी आर फायरिंग अप द बारबेक्यू ग्रिल विद अ साइड ऑफ तंदूरी चिकन, या अगर आप वो स्पेक्टैक्युलर फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं ओवर द डैलस स्काईलाइन इन योर कुर्ता पजामास, लेट्स से दिस प्लेस डेफिनेटली हैज बिकम होम. सो टुडे वी सेलिब्रेट द फ्रीडम टू स्टे ब्यूटिफुली रूटेड इन हु वी आर in this most free country that you can be part of. There is something truly magical about our journey, my journey, your journey, the beauty of imbibing the absolute best of both worlds. And we proudly carry the rich culture we were born into while gracefully growing with the one we are sort of evolving with every single day. है कि नहीं. तो हैप्पी 4th July टू ईच वन ऑफ यू लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM. माई लवली देसी कम्युनिटी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट.

0: that's pretty much all the time I have with you all. मुलाकात होगी सीधे मंडे को. Have a fabulous long weekend and happy 4th to all of you.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
2: Documents या parcel भेजनी है?
4: हाँ.
2: घर relocate करनी है?
4: हाँ.
2: गाड़ी भी transport करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
5: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर move का perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
6: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
8: Astrology readings of our guidance only and results may vary.
9: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or 5 rings. Dine in only.
3: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
10: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
12: Hey, tumne kabhi insurance liya?
13: Liya.
12: Kabhi policy samajh bhi aaya?
13: Nahi aaya.
12: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: विजिट www.sanadainc.com today.

अ वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। आज है फन फ्राइडे और हम बहुत सारी इंटरटेनिंग बातें करने वाले हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्ले करने वाले हैं, कुछ गिव अवेज भी हैं हमें आपको देने के लिए, तो स्टे ट्यून्ड। वैसे आज हम बात करेंगे उन सुपरहिट गानों की जिन्हें हमने सालों तक कॉन्फिडेंस के साथ गाया, डांस भी किया, शादियों में परफॉर्म किया, लेकिन आज कोई अगर पूछ ले कि भाई ये जो तुम गाना गा रहे हो उसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, वी डोंट नो, वी जस्ट स्माइल एंड वी से कि भाई वाइब है, पसंद आ रहा है तो गा रहे हैं। तो आज का थीम यही है कि लिरिक्स समझ ना आए लेकिन गाने जो दिल को भाए, चाहे वो ढिंक चिका हो, तक्तनना तंदूरी नाइट्स हो, गगनम स्टाइल हो, हुक्का बार हो या फिर दी आइकॉनिक लुंगी डांस। फोन उठाइए और हमें बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसका मीनिंग आज तक आपको समझ नहीं आया, पता नहीं है, फिर भी आपकी प्लेलिस्ट में वो परमानेंट मेंबर है। बताइए हमें बाय कॉलिंग अस 972-235-5555।

जी हाँ, आज हम वैसे ही सॉन्ग्स के बारे में बातें कर रहे हैं जिसकी वाइब तो मस्त है, लाइक रात भर साथ चल बैंग बैंग, लेकिन लॉजिक थोड़ा साइड हो गया है। मतलब व्हाई वुड यू टेल अ पर्सन कि चलो रात भर बातें करें, यू नो रोमांस करें, एंड देन बैंग बैंग, ओके, एंड सिमिलर वाइब एंड लिरिक्स वेर ऑफ ढिंक चिका, मतलब कुछ नहीं यार, बस बस वाइब है, फुल कैरेक्टर एनर्जी है, म्यूजिक है अमेजिंग सा। और दो अगला सॉन्ग है इसी लिस्ट में, दैट इज फ्रॉम हिमेश रेशमिया मूवी कर्ज, जो कि ओरिजिनल ऋषि कपूर की कर्ज मूवी का रीमेक था, उसमें एक सॉन्ग आया था, तक तंदूरी नाइट्स तंदूरी नाइट्स। आई मीन अगेन बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है इस पूरे इनके लिरिक्स का, लेकिन वाइब अगेन अगेन अमेजिंग सॉलिड। सो लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco. अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है।
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं,

0: कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
1: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
0: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
2: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
3: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
2: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
3: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
0: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को. कॉल 972-666-1181. मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
0: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
5: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: एंड विद दिस सॉन्ग आज का जो हमारा सेगमेंट था कि भाई लिरिक्स पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिकल नहीं है, लेकिन वाइब मस्त है. हुक्का बार वाज वन ऑफ दी सॉन्ग इन दैट लिस्ट. आई मीन तेरा प्यार प्यार प्यार हुक्का बार, हु सेज दैट. आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी. स्टूडियो में वक्त हो गया है 1:09 और आज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट, SBL लोन एक्सपर्ट मिस्टर शाहिद पंजवानी जी. वेलकम टू आवर शो शाहिद.
1: थैंक्स फॉर हैविंग मी.
0: शाहिद जी, क्योंकि आप एक SBL लोन एक्सपर्ट है, आपके लिए एक सवाल है ऑन बिहाफ ऑफ माय लिसनर्स कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके लिए क्या लोन ऑप्शंस होता है, क्योंकि कई बार नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो काफी कुछ होता है, लेकिन एग्जिस्टिंग वालों के लिए क्या होता है अगर वो बिजनेस ग्रोथ का सोच रहे हो.
1: देयर इज करेक्ट. एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स को हमेशा कैपिटल की जरूरत होती है, चाहे ग्रो करना है या चाहे बस फंडिंग उनके अपने रेवेन्यू से आनी है और कोई डिले है, दे नीड फंड्स. Issue is that most business owners assume that there are very limited options, and what they end up doing is कि वो अपना business credit card max out करते हैं, line of credit use कर लेते हैं जब पैसा की जरूरत होती है, या वो hard money जो fast funding होती है 2-3 दिन में पैसा मिल जाता है उस तरीके के महंगे loans apply कर लेते हैं. पैसा जल्दी मिल जाता है लेकिन interest rate बहुत high होता है और payments weekly या daily करनी होती है. So business owners, if you have been in business for at least 1 year, we have a very simple loan solution for you. कोई tax return नहीं देना है upfront, कोई bank statement नहीं देना है. हम आपकी credit पे hard inquiry भी नहीं करेंगे, ताकि कोई जैसे अगर आप loan के लिए apply करते हो, inquiry होती है और आप decline हो जाते हो, then that inquiry stays on it and your score goes down. At the same time, अगर आप apply करते हो, approve हो जाते हो और आपको term interest rate payment पसंद नहीं आते तो भी वो inquiry रह जाती है. So we are not doing hard inquiry. We are not needing any tax returns or bank statements, and we will give you your loan pre-approval in under 10 minutes. Aapka rate, aapki amortization, aapko collateral chahiye ya nahi chahiye, aapki monthly payment kitni hogi, ye sara out and out, sirf kuch 5-7 question ke aap answer do, and we will have your loan proposal under 10 minutes. This program is specifically for existing business owners who have been in business for 1 year or more. If you need money to grow, don't apply those hard money loans, don't go max out your credit cards and don't stress out ke bahut sara paperwork dena padega. We will get you the solution under 10 minutes. Just reach out to us, provide the basic information about your business and you will be done.
0: That's great, शाहिद. I think जो आपने बात कही ना कि hard inquiry और ये सब नहीं होता है, that must really bring down the stress levels of existing business owners. और अगर इनको आपको reach out करना हो तो कोई contact number या website है आपके पास?
1: Yes, or as you said, hard inquiry तो एक stress है ही. Paperwork सबसे ज्यादा stress है. Apply करने के पहले ये stress हो जाता है कि कितना paperwork देना पड़ेगा, वो problem भी हमने solve कर दिया है. They can reach me direct on my direct line 817-786-3338, 817-786-3338.
0: Thank you so much, Shahid ji. It must be really helpful for our listeners and we'll connect with you again. Have a good day.
1: Definitely. Thanks, Ryan.
0: और हमारे लिसनर्स के लिए जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स का सिलसिला है वो तो जारी है ही, बाकी एक गिव अवे राउंड भी आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस.

तो ये चलिया चलिया करते करते चलिए अब हम गिव अवे राउंड भी खेलते हैं, और अगर आप ये जीतेंगे तो आपको मिलेगा $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ऑन द डाइनिंग ऑप्शंस फ्रॉम चंडीगढ़ बाय इट्स इजंट इट अमेजिंग। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको इंश्योर करना है कि ये गिव अवे आपको फन एशिया के किसी भी शो में लास्ट 1 month में ना मिला हो। नेक्स्ट आपको एक सवाल पूछूंगी मैं, उसका जवाब देना है बाय कॉलिंग मी, मैं आपको नंबर भी बताऊंगी और फिर आपको मौका मिल सकता है ये गिव अवे जीतने का। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो आज के थीम के अराउंड ही है। मैंने ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले किए आज जिनके बारे में हमने बात की कि इनका जो मीनिंग है, जो लिरिक्स है, वो काफी लॉजिकल नहीं है, लेकिन पॉपुलर है, हिट है, और हम सब ने उन सॉन्ग्स को एंजॉय किया। तो इन्हीं सॉन्ग्स में से, या फिर अगर आपको कोई अपना सॉन्ग भी ऐसा लगता है जो आप जानते हो जिसका कि लिरिक्स का कुछ मतलब नहीं है बट हिट एंड पॉपुलर है एंड वी ऑल वाइब, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। यू हैव टू लिस्ट टू द नेम्स ऑफ दिस सॉन्ग, और एक और कैवियट है कि मतलब हिंदी सॉन्ग्स ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोलावेरी डी बजा रहे, उसका मतलब है, बस इस हिंदी लैंग्वेज में नहीं है। तो हिंदी में वो दो सॉन्ग्स जिनके लिरिक्स के कुछ खास मतलब नहीं होता है लेकिन पॉपुलर हैं। यू हैव टू कॉल मी एट 972-235-5555।

हाँ जी, ये गिव अवे राउंड अब खत्म हो चुका है। बहुत सारे कॉल्स आए हमें और कुछ कॉल्स हम नहीं ले पाए, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग्स के बारे में बात हुई, क्योंकि आज का थीम ऐसा था कि भाई आपको बताना है कि कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत हिट है, सुपर हिट है, सब गाते हैं, लेकिन लॉजिक साइड में रख के, क्योंकि कुछ मतलब है ही नहीं जो वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं। संजय ने बताया, यू नो, एक सॉन्ग है जो फेविकॉल से, फ्रॉम द मूवी दबंग, जो कि मेक्स नो सेंस एब्सोल्युटली। और ब्लू है पानी पानी पानी, और भी बहुत सॉन्ग उसने, तुनक तुनक तुंग तुनक तुनक तुंग। सो ये सारे सॉन्ग्स हैं और आज के विनर भी संजय ही हैं। और भी कॉल्स आए हमें, समर से हु अगेन मेंशन दिस, तुनक तुनक तुंग तुनक तुनक तुंग, कुछ भी है बट गा रहे हैं। एंड देन वी हैड डी पटेल कॉलिंग अस एंड रिमाइंडिंग अस अबाउट दिस, तम तम लोगे, क्या है तम्मा तम्मा, नो वन नोज, नो बडी केयर्स, बट एवरीबडी वाइब्स एंड पूरी मेन कैरेक्टर एनर्जी आती है यार उस पर डांस करने में, क्या मजा आता है। फिलहाल तो हमें हमारा विनर मिल चुका है, वो है संजय जी, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ऑन द डाइनिंग ऑप्शंस। और अगर आपको कोई नहीं मिला बट कोई बात नहीं, आप मंडे टू फ्राइडे भी अगर आप जाएंगे ना चंडीगढ़ बाइट्स पे, तो वो अपने डिशेज रोटेट करते रहते हैं लंच के टाइम पे। और ये लोकेटेड है एट मैकडर्मट ड्राइव इन एलन। और अगर आपको इस पर कोई और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग द मेन्यू और द ओपनिंग और द क्लोजिंग आवर्स, तो जरूर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज chandigarhbites.com। और संजय, नाउ दैट यू हैव रिमाइंडेड मी अबाउट दिस पानी पानी, आई एम गोना प्ले दिस।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नाग।

0: एडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं मुझको बेबी लक्की कर बात हमारी पक्की कर इतना
1: इट्स ट्रू हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स Even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
5: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
7: Wait, na sab aur price?
6: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
8: Main heroine hoon.
9: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं.
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं.
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं.
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
15: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
16: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
17: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or 5 rings. Dine in only.
18: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
19: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
5: सच में? सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। और ये जो सॉन्ग था ना, प्यार होता होता होता कई बार, मुझे नहीं पता कि आप कितना बिलीव करते हो इस पे, लेकिन अगर जो डायमंड्स और गोल्ड ज्वेलरीज है मलाबार के, आप उनके हर पीस को अगर आप देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार, ये भी अच्छा, इससे भी प्यार हो गया, ये भी अच्छा, इससे भी प्यार हो गया, क्योंकि उनके सारे के सारे जो डिज़ाइनर कलेक्शन है, सब कुछ इतना अमेजिंग है कि आपको उनकी कलेक्शन से ज़रूर बार बार प्यार हो जाएगा। ये मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स जो हैं प्रेस्टन रोड में लोकेटेड हैं, फ्रिस्को में, और ये आपके लिए एक डेस्टिनेशन बन सकता है अगर आपको एक स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी चाहिए जो कि एलिगेंट हो, टाइमलेस हो, और तो और चमकता हीरा जिसको बोलते हैं ना, एकदम क्राफ्टेड टू शाइन, वैसा है इनके सारे पीसेस। या आप यहाँ पे ब्यूटीफुल रिंग्स पाएंगे, ईयररिंग्स में मिलते हैं, डार्जलिंग नेकलेसेस और कंटेम्प्रेरी डायमंड के पीसेस, और तो और इनके पास ना इंगेजमेंट्स के लिए, एनिवर्सरी के लिए, कोई भी सेलिब्रेशन के लिए, या फिर अगर आप खुद को ट्रीट देना चाह रहे हो, खुद के लिए कुछ खरीदना चाह रहे हो, तो भी आप यहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि इनके पास अनमैच्ड क्राफ्टमैनशिप है और ब्रिलियंस है, विच इज डायमंड्स, गोल्डन डायमंड, विच इज मलाबार इन फ्रिस्को। आप जरूर जाएं और फिलहाल ये नेक्स्ट गाना भी एंजॉय करें।

0: वैसे गुलाबो थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी बना लो, और अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो सीपीए सुधीर भाई है ना, उनका जो माई टाइम इक्विटी फर्म है वो हेल्प करता आया है इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखना है, कोई रियल स्टेट अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए यू नो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं ग्रोथ के लिए, बेटर इनकम सोर्स के लिए, तो आपको जरूर माई टाइम इक्विटी से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो करना चाह रहे हैं, तो भी माई टाइम इक्विटी इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि ये आपको देते हैं पर्सनलाइज सॉल्यूशन विच इज डिजाइंड अराउंड योर गोल्स। तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उनके वेबसाइट पे जाइए विच इज mytimeequity.com, या फिर उनको कॉल कीजिए एट द नंबर 4697021272।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी। आगे लगेगी।

देखिए, जो सावन में आग लगी है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पेट में आग लगी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पेस्ट्री ईटरी जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ मिलता है सिजलिंग कबाब से लेके फ्लेवर फूड चाट तक, और फ्यूजन बाइट्स भी हैं, रिफ्रेशिंग मॉक टेल्स भी हैं। और अगर आप अभी तक पेस्ट्री ईटरी नहीं गए तो आप सीरियसली कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मिलता है मॉडर्न फ्लेवर के साथ। आप यहाँ पे ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए और डेट नाइट के लिए भी जा सकते हैं। और कुछ भी अगर ऐसा नहीं है ना, दोस्तों के साथ एक फूडी मीटअप है, कहीं पे जाके इकट्ठे बातें करनी है, टाइम स्पेंड करना है, तो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी वाइब काफी वाइब्रेंट है, फुल ऑफ एनर्जी है। पेस्ट्री ईटरी इज लोकेटेड एट हब 121। और अगर आपको इसके मेन्यू या ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स के बारे में कुछ जानना है तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए, विच इज पेस्ट्री ईटरी.com।

0: अब बात कर लेते हैं थोड़ी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की, कि यूजुअली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक तो क्या आपको अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग की जो परेशानी है वो तो है ही, प्लस आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट मिलते हैं, लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, पूरे के पूरे आधे घंटे डॉक्टर्स आपके साथ बिताते हैं और इसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है तो आप वहाँ ज़रूर जा सकते हैं। और इतना भी नहीं, अगर आपको पता है कोई ऐसे एक्सपीरियंस प्राइमरी केयर स्पेशलिस्ट हैं तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज लुकिंग टू हायर देम, चाहे वो डॉक्टर्स हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, पीडियाट्रिशियन हो, साइकेट्रिस्ट हो, फुल टाइम पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो जरूर आप इनको कॉन्टैक्ट करें। फॉर
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
4: हाँ, देख लेंगे।
3: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
4: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
5: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस। PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस, नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलस न्यूएस्ट।
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
19: इन प्लेनो।
18: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469

0: इट पिकम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
1: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
2: इन प्लेनो।
1: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम। ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
5: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

आई थिंक एवरी थिंग इज स्पेशल अबाउट विशाल एंड शेखर के हिट्स एंड द अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग न्यूज फॉर यू लिसनर्स इज कि विशाल और शेखर का जो सुपर हिट डुओ है वो अपना सुपर हिट टूर लेके आ रहा है इन डैलस ऑन संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड. टिकट्स अवेलेबल हैं सेल पे. यू कैन गो टू kashpatelproductions.com एंड गेट द टिकट्स. और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए 30% एडिशनल तो आपको यूज करना है हमारा कोड जो कि है फन एशिया. ओके, स्टूडियो में वक्त हो गया है 2:10 और वक्त आ गया है कि मैं आपके साथ जो नेक्स्ट हमारा गिव अवे है वो खेला जाए. भाई वक्त आ गया है, तैयार हो जाइए. मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है. मैं एक सॉन्ग बजाऊंगी नेक्स्ट और आपको बताना है कि ये किस मूवी से लिया गया है. अगर आपका जवाब सही निकला तो आपको मिलेगा $20 का डिस्काउंट फ्रॉम नियॉन कैक्टस. ओके, जो कि काफ़ी फेमस है अपने मेक्सिकन फूड और फ्यूजन के लिए. सो एकदम ध्यान लगाइए और मोबाइल रेडी रखिए. आपको कॉल करना है मुझे 972-235-5555.

द सॉन्ग वॉज बंजारा फ्रॉम द मूवी एक था टाइगर. और आज के जो लकी विनर हैं फॉर दिस गिव अवे राउंड द नेम इज भागेश जैन. कॉन्ग्रेचुलेशंस भागेश, आपको मिलता है $20 का गिफ्ट कार्ड ऑन द डाइनिंग ऑप्शन फ्रॉम नियॉन कैक्टस. और नियॉन कैक्टस जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा फेमस है. अगर आपको मैक्सिकन फूड, मैक्सिकन फ्यूजन पसंद है विद द ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो आप यहाँ जरूर जाएं. यहाँ आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट, जबीहा हलाल ऑप्शन और प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन चॉइसेस भी मिलेंगे. और यहाँ की जो वाइब है ना, यंग है, कलरफुल है, मॉडर्न है, फुल ऑफ एनर्जी है. तो आप यहाँ हैंग आउट्स के लिए जा सकते हैं, डेट नाइट्स के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर आपको दोस्तों के साथ हैवी चिल करना है तो भी आप जा सकते हैं. यहाँ पे क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स और हैप्पी आवर्स भी हैं दोस्तों फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. और स्पेशल डिशेस और ऑफर्स रहते हैं एवरी सिंगल डे, तो आप जरूर चेक करें जाने का कि आज का स्पेशल क्या है.

देखिए, डांस वाली एनर्जी का इंतजाम हो गया है, मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी का भी इंतजाम हो गया है, लेकिन जो कमर्शियल एनर्जी है रिक्वायरमेंट बाय द बिजनेस ओनर्स, उसका सोल्यूशन का क्या कोई बात ही नहीं कर रहा उस पर। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन उसका भी सोल्यूशन है फ्रॉम द तारा कमर्शियल एनर्जी। जो तारा कमर्शियल एनर्जी है ना, वो प्राउडली टेक्सस बिजनेसेस को हेल्प करते आ रहे हैं सिंस 2002। इनके रेट्स कॉम्पिटिटिव हैं, सर्विस रिलायबल है, और इनके जो एनर्जी प्लान्स हैं वो कस्टमाइज होते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको उनसे बातें करनी है, कोई कंसल्टेशन लेना है, तो आप उनको ज़रूर कॉल करें एट 844-428-2808, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज़ ताराएनर्जी.com।

वेल दिस माशुका इज अबाउट टू गो. वक्त आ गया है कि मैं आपको टाटा बाय बाय कह दूं और आफ्टरनून अड्डा जो है अब मैं मंडे को लेके आऊंगी 12:30 से 2:30 बजे तक. एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. ये आपको प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अभी तक अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं अभी तक, काफी अनटैप्ड हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर बिजनेस लेवल पे, तो आपको एजी फिनटेक्स को जरूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए बाय कॉलिंग देम एट 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज agfintechs.com. और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फन एशिया को सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें. और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं देन माई इंस्टा आईडी इज gimmesimi gimmesimi. और टाटा बाय बाय, आई मीन आई नो दिस लास्ट सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू प्ले सेज थोड़ी देर और रुक जा, बट नहीं रुक सकती, सॉरी.

0: को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: आर यू गेटिंग द बेस्ट वैल्यू ऑन योर लाइफ इंश्योरेंस और एन्युइटी नीड्स? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
5: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
6: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me. It's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
9: हाँ।
8: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ।
8: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ।
8: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
11: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
12: लिया।
11: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया।
11: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
13: Visit www.sanadainc.com today.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड, व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
15: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
16: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
15: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
16: वेट, व्हाट?
17: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
18: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
17: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन।
19: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fanasia Radio सुन रहे हैं आप. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Every Monday through Friday, मैं आपके साथ रहती हूँ 2:30 बजे से 5 बजे तक. और every day I bring a new flavor for you right here on Sunehri Kiran. आज है Friday. और Friday तो आपको पता ही है. First of all, thank God it's Friday. Everybody is happy that it is Friday. और especially आज का Friday बहुत ही special because most of you are on a हॉलीडे. सब लोग हॉलीडे पे हैं. बच्चे तो वैसे ही खैर घरों पे हैं, लेकिन चारों तरफ हॉलीडे का माहौल सा चल रहा है. सो इफ यू आर ऑन द रोड ड्राइविंग गोइंग समवेयर, डू नॉट चेंज द चैनल. 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो ही वो जगह है जहां आपको मिलेगी नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट. बच्चा पार्टी 3 PM to 4:30 PM, रेडी हो जाइए. टुडे इज फ्राइडे, सो किड्स जंक्शन विल बी कमिंग अप फॉर यू. आई विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव एंड योर रिक्वेस्ट्स लाइव एज वेल. कुछ गिव अवेज हैं जो स्पेशली मैं फ्राइडेज को बच्चों के लिए डेडिकेट करती हूं. सो किड्स गाइज, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप पार्टिसिपेटिंग. बट दिस 25 मिनट्स दैट आई हैव विद यू इज वेरी स्पेशल बिकॉज आई ब्रिंग यू मिक्स स्पॉट इन दिस 25 मिनट्स, दैट इज 2:30 till 3 PM. एंड इसमें हम प्ले करते हैं कुछ नए गाने, कुछ पुराने गाने, एज द नेम सजेस्ट. दिस इज मिक्स स्पॉट.

जी हाँ, डिस्को डांसर का ये गाना तो डेफिनेटली कोई नहीं भूल सकता। ये वो टाइम था जब हीरोइन जो हैं, वो हीरो जो कि मिथुन चक्रवर्ती ने जो रोल प्ले किया है, उनको कन्विंस कर रही होती हैं टू गेट बैक इनटू म्यूजिक, एंड दैट वाज व्हेन दिस आइकॉनिक नंबर वाज पिक्चराइज्ड। और अब देखिए, मिक्स पॉट में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ या कि एक गाने से, पुराने गाने से मुझे क्या नया गाना याद आया या एकदम से मेरे जहन में कौन सी लाइट जली। तो जो जिमी जिमी आजा से जो मेरे जहन में लाइट जली है वो है जी कि अभी तक, कब से बुला रहे हैं, अभी तक आई नहीं। एंजॉय, यू ट्यून्ड इनटू मिक्स पॉट।

छुट्टी का टाइम चल रहा है. इफ यू आर ड्राइविंग समवेयर, प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड बी सेफ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इससे मुझे ख्याल आया कि देखिए, अगर आप किसी अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, समवन यू नो ऑफ इज इन्वॉल्व एंड यू केयर फॉर, या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो दिस सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. एंड यू नो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऐसी सिचुएशन में डील करनी होती हैं. इंश्योरेंस कंपनीज, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट इवन नो अबाउट. और स्पेशली अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी नीड एन अटर्नी बाय आवर साइड जो हमारे लिए इस प्रोसेस को हैंडल करें. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. नॉट ओनली विल ही हेल्प यू फाइट द केस, बट ही विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन जो आपके लिए बन सकती है इस सिनेरियो में. एंड द बेस्ट पार्ट is that you don't have to pay anything until you win the case. So aapke liye hai ye ek win-win situation. So in this stressful environment ya is mushkil ke time mein ye rahat ki khabar hai aapke liye. Give attorney Umar Khwaja a call if you or someone you know need this assistance. And that number is 469-300-5046. 469-300-5046 is the number. Ya phir visit kijiye attorneyomar.com. You're tuned into Mixpot.

प्रदीप कुमार और बीना राय के ऊपर पिक्चराइज्ड ये फिल्म, फिल्म का नाम था जी ताज महल, जो कि 1963 में रिलीज हुई। एम सादिक ने इसे किया था डायरेक्ट। एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मूवी विद सम ब्रिलियंट ब्रिलियंट म्यूजिक। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। अगर आप पुराने पुराने रोमांटिक गानों की बात करें तो मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगला गाना जो मैं मिक्स पॉट में ऑफ कोर्स कुछ नया आपके लिए लगाने लगी, आप एक पुराना और एक नया गाना, इसी तरह हमारा मिक्स पॉट चलता है और उसी आइडिया से अगला गाना मैं कोशिश करती हूँ लेकर आऊँ। अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो कुछ और प्ले कर देते हैं। लेकिन फिलहाल वादे से मुझे वादा याद आया, जो किया था आयशा झलका ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म खिलाड़ी में। लेकिन उस गाने को आपके लिए लगाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप H1B, F1 या फिर L1 वीज़ा पे हैं, या फिर कोई नॉन इमिग्रेंट स्टेटस वीज़ा स्टेटस है आपका और आप चाहते हैं कि पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी आप फॉलो करें, तो फिर लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता आपकी मदद कर सकते हैं। अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करती है एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, चाहे वो EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा हो, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, परम लेबर सर्टिफिकेशन हो, US सिटीजनशिप हो। सो आपका कोई भी सवाल है आप सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स को ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं एंड दे विल गेट बैक टू यू एज सून एज दे कैन। दैट ईमेल आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com, विच इज SEEMAMEHTA lawfirm.com। वंस अगेन दैट ईमेल आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com। और ये वो वादा था जो निभाना पड़ेगा, और ये वादा है आयशा भी कह रही हैं अक्षय को और अक्षय भी कह रहे हैं उन्हें।

जी हाँ, वादा रहा सनम लिया गया फिल्म खिलाड़ी से. बहुत ही कमाल की फिल्म थी खिलाड़ी. एक बड़ी ही आप कह लीजिए सस्पेंस थ्रिलर मूवी. और इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. इट हेल्ड द सस्पेंस थ्रू द एंड कि कौन है आखिर कातिल, ये पता लगाए कोई. सो वन ऑफ दोज सस्पेंस मूवीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. अनदर सस्पेंस मूवी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट इज गुप्त. इट वॉज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सस्पेंस मूवी. एक और फिल्म जिसमें जो थोड़ी पुरानी है, जो मुझे इस वक्त याद आ रही है ऑन टॉप ऑफ माई हेड, इज खोज, जिसमें ऋषि कपूर होते हैं. बड़ी ही कमाल की सस्पेंस था उसके अंदर. सो ऐसे ही बातों बातों में मैंने आपको तीन चार सस्पेंस मूवीज बता दी. अब मैं आपके लिए जो गाना लगाने लगी, देखिए मिक्स पॉट में अब बस हमारे पास 6-7-8 मिनट रह गए हैं. सो ये गाना आपके लिए प्ले करूंगी, एक पुराना गाना क्योंकि अभी हमने नया किया है. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. और जिस तरह इन्होंने अपनी महबूबा की तारीफ की है इस गाने में लिखने वाले ने, वैसे बहुत कम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान बनाए जो ऐसे तारीफ कर सकता है. कहते हैं चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो.

0: हो।
1: जी हाँ, चौदहवीं का चांद फिल्म से सुन रहे थे, चौदहवीं का चांद आप ये गाना, और लिखा था इसे जी शकील बुदायुनी साहब ने, और लिरिक म्यूजिक दिया था रवि साहब ने, और फिल्म थी गुरुदत्त की, इसमें तो कोई वो नहीं। और अब जो है, जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने लगी हूँ, इस गाने से ख्याल आया मुझे, चौदहवीं का चांद है और चांद की तो खासियत है कि छुप जाता है तो निकलता ही नहीं। विद दिस सॉन्ग वी आर रैपिंग अप दिस मिक्स पॉट सेगमेंट एट 3 o'clock आफ्टर द ब्रेक। आई विल ब्रिंग किड्स जंक्शन बच्चा पार्टी, गेट रेडी फॉर योर कॉल्स।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
4: Your new destination has arrived.
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
7: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
8: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
10: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
11: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
10: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
12: Beta, 95% आए?
13: हाँ मम्मी.
12: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
14: मेरा?
12: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
14: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
15: Genie, hukam meri aka. Hum aaj party ke mood mein hain. Ek aisi jagah batao jahan meri entry hi royal ho.
16: Miraj Lounge chaliye meri aka. Luxury limousine rides aapke intezar mein hain.
15: Mujhe zyada crowd pasand nahi.
16: No problem aka. Luxury private space bhi hazir hai aapki private party ke liye.
15: Aur entertainment?
16: Movie night, belly dancing nights, premium hookahs aur amazing vibes sab aapki khidmat mein hai.
15: Wah Genie, ye jagah hai ya koi jadoo?
16: Jadoo nahi, Miraj Lounge at McKinney Ranch Parkway. Miracles happen in Miraj.
17: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun.

0: Funny Asia Radio. You are live in air. What is your name?
1: Rahil. Namaste.
0: Ji, namaste. How are you doing?
1: Oh, so, acha, aap kaise kar rahe ho?
0: Okay. Main bilkul theek hu. Thank you so much. Batao, kya sunoge, beta?
1: खाना खा के दारू पी के चले गए।
0: ये गाने का नाम है?
1: हाँ, जग्गा जासूस।
0: अच्छा, खाना खा के
1: दारू पी के चले गए।
0: अच्छा ठीक है जी, ये तो मुझे आपके लिए ढूंढना पड़ेगा। आई फाउंड दिस सॉन्ग फॉर यू फॉर श्योर। आई विल प्ले इट। टेल मी, हाउ इज योर समर ब्रेक गोइंग?
1: बहुत अच्छी। हम गिटार भी करते हैं।
0: आप गिटार प्ले करते हैं?
1: हाँ।
0: ओके, ऑसम, दैट इज ग्रेट।
1: अभी सीख रहे हैं।
0: ऑल राइट, वंडरफुल। और समर ब्रेक में कहीं जाने का प्लान है आपका?
1: हो सकता है।
0: किधर जाएंगे?
1: कनाडा।
0: ओके, लवली, वंडरफुल। थैंक यू सो मच आपकी फोन कॉल का, एंड आई विल प्ले योर सॉन्ग फॉर यू। एंजॉय योर हॉलीडेज।
1: थैंक यू।
0: यू आर वेलकम।
2: सब खाना खा के दारू पी के चले गए।
3: चले गए चले

0: Our IG phone calls are coming. Requests are lined up. Lining up, actually. And I am taking you all to a short break. After the break, I will come back. Your phone calls should keep coming. Stay tuned.
1: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
11: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
12: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
11: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
11: मामू, देखो क्या हो गया।
13: ओ, क्या हो गया?
11: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
13: ओए, जर्मन का कमाल है।
11: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
13: ओए नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
15: तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है। तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
16: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ?
13: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
12: Foodistan in Aubrey. Everything desi, one place, one vibe.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
19: इट्स लॉसन।
18: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
19: इट्स लॉसन।
18: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
20: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
21: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
22: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस।
23: आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर with Keller Williams Realty.
22: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Because every house has a story.

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
3: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
2: Your new destination has arrived.
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
6: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो।
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल। Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
19: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
20: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
21: प्लान या होप?
20: मतलब है
21: प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
20: ओके, तो मेरा वाला होप है।
21: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
20: क्यों?
21: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
9: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट wealthtactic.com।
22: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
23: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
22: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
22: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
11: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM।

वैसे कुछ लोग होते हैं जिनके आगे जग सारा रत्ती भर का लगता है। सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गाना, आप ही की फरमाइशें, और अभी एक दो ये जो फरमाइश है जो बच्चों की रह गई थी ये ही प्ले कर रही हूँ। सुन रहे हैं आप फाइनेंशियल रेडियो, मैं हूँ किरण, आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण रेके 5 बजे तक, जुम्मे से मंडे से लेके फ्राइडे तक 2:30 बजे से 5 बजे यानी कि 2:30 till 5 PM आई एम हियर विद यू। आई स्टिल हैव सम ब्यूटीफुल म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू, आई हैव वेदर, ट्रैफिक, करेंसी, गोल्ड प्राइस, बहुत कुछ है अभी आपके लिए, और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्थ और सेहत से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्या एक अपडेट आपको देना चाहती हूँ, एक मशवरा आपको देना चाहती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इट्स बिन यू वन ऑफ दोज पीपल जो काफ़ी टाइम हो गया है आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, PCP को नहीं दिखाया अपनी सेहत के लिए, तो इट इज़ टाइम नाउ टू यू नो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। और एक जगह मैं आपको बताती हूँ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, ये वो जगह है जहाँ डॉक्टर आपको 2 मिनट में देख के फारिग नहीं करने वाला, बल्कि हर अपॉइंटमेंट आधे घंटे के लिए स्केड्यूल की जाती है, बिकॉज योर हेल्थ इज ऑफकोर्स वट मैटर्स टू यू एज वेल एज टू देम एज वेल, दे ट्रीट यू लाइक अ फैमिली, एंड यू नो फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर द कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हैज बिन ऑपरेटिंग एंड नाउ दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। सो अगर फर्स्ट सबसे पहले तो ये कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है या आपने उनको कॉल करना है तो दो नंबर्स, एक नंबर और एक वेबसाइट आईडी ले लीजिए, दैट नंबर इज 214-666-6259। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल है अपॉइंटमेंट के हवाले से, उनकी सर्विसेज के हवाले से, तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन 214-666-6259। या फिर उनकी वेबसाइट इज अवेलेबल, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट विच इज passionhealthphysicians.com। वंस अगेन दैट वेबसाइट इज passionhealthphysicians.com, और जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए उन्हें, बिकॉज योर हेल्थ इज देयर पैशन। और अब अगर आप डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, यू आर अ प्राइमरी केयर डॉक्टर, यू आर एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, यू आर पीडियाट्रिशियन, यू आर अ साइकियाट्रिस्ट, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ फुल टाइम और अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, तो प्राइमरी हेल्थ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हायर भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं उनकी इस ईमेल आईडी पे, विच इज़ passionhealthphysicians@gmail.com, passionhealthphysicians@gmail.com पे आप अपना रेज्यूमे सेंड कीजिए, अपना इंटेंट सेंड कीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे, दिस इज़ फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अ जॉब अपॉर्चुनिटी, एंड दैट नंबर इज 217-454-4639 is that number where you can send your resume, you can send a text to get more information. Passion Health Primary Care, your health is their passion.

और वक्त आ चला है आपको वेदर अपडेट देने का जी. आज है फ्राइडे जुलाई द 3rd. व्हाट अ स्पेशल डे. कल छुट्टी है. द एंटायर यूएस इज सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस 4th ऑफ जुलाई. आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो. आई होप यू हैव प्लान्स फॉर वॉचिंग दोज एक्सक्लूसिव फायरवर्क्स जो आपके नेबरहुड में हो रहे हैं या डालस के बहुत सारे एरियाज में हो रहे हैं. सो एन्जॉय दैट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. और आपको वेदर की अपडेट देते चलते हैं. आज तो मौसम का हाल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. कुछ जगह पे आज फायरवर्क्स हो रहे हैं, कुछ पे कल fireworks ho rahe hain. So it's important to know how is the weather looking like. So 4:44 p.m. in the studio aur Mikini mein is waqt hai ji 95 degrees. However, it feels like 101. So triple digit feeling hai. Bahar kafi zyada garmi ki feeling hai, lekin din raha mostly sunny aur highs jo hain wo mid 90s mein rehne wale hain, jabki sham rahegi partly cloudy with lows in the upper 70s. Pollen count is 4.5, which is low medium, jabki UV index is of course extremely high, which is 10 and 11. So keep your sunscreens handy jab aap bahar hain, dhoop nikli hui hai, and keep yourselves hydrated, which is very important. Nahi to sar ka dard and so many problems that are associated with dehydration. Sunrise aaj ka hua 6:21 a.m. jabki aaj ka sunset hoga 8:39 PM. और इसी के साथ आपको ये भी बताती चलूं कि कल जुलाई द 4th को भी मौसम जो है वो 20% सनी रहेगा. 20% चांस हो सकता है स्टॉर्म्स का या शावर्स का, बट नॉट टू मच. हाईज इन दी अपर 90s होने वाले हैं, जबकि शाम जो है वो पार्टली क्लाउडी होगी विद लोज इन दी अपर 70s. बारिश का कोई इम्कान नहीं है. सो इट इज अ गुड एंड अ लकी डे टू हैव लॉट्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे फायरवर्क्स. एंड द सेम विल गो विद जुलाई द 5th, विच इज संडे एज वेल. Day will be sunny and hot, highs in the upper 90s. In fact, heat index can go up till 106. So please, bahut dhyan rakhiyega Sunday ko. Aur raat jo hai, wo bhi partly cloudy rahegi, lows in the upper 70s. That was your weather forecast brought to you by Malabar Gold and Diamonds.

और right, जी अगर आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स डालस में रहते हैं तो देखना तो चाहिए, हमारे शहर में आया हुआ है वर्ल्ड कप, वैसे तो बहुत सारे शहरों में आया हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपसेट आप कह लीजिए या कह लीजिए एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया हार गया है इजिप्ट से। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है टॉप 16 के रन से और इजिप्ट पहुंच गया है जी टॉप 16 में, और अब एक बहुत बड़ा मैच 5 बजे होने वाला है। मैंने यहां से भागते ही मैच देखना शुरू कर देना है, दैट इज अर्जेंटीना और काबो वर्डे का मैच है, सो मेसी विल बी लाइव ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन इफ यू आर नॉट वॉचिंग दैम। ऑफकोर्स अगर आपने टिकट नहीं लिया, क्योंकि टिकट लेना तो मतलब ऐसे था जैसे कोई बाहर जाए दरख से कोई चंद हजार डॉलर तोड़ के ले आए और टिकट खरीद ले, कुछ ऐसी ही सिचुएशन टिकट की लगी हुई है। बहरहाल लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज इंटरेस्टिंग मैचेस दैट आर गोइंग टू हैपन टुडे, जो होने वाला है ये मैच, जो आज का एक मैच तो हो चुका ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट का, इजिप्ट जीत गया है, अर्जेंटीना और काबो वर्दे का अब होने वाला है 5 बजे और फिर कोलंबिया और गाना का होने वाला है 8:30 बजे। सो इट इज गोइंग टू बी अ जैम पैक्ड डे फॉर यू इफ यू आर अ सॉकर फैन। एंड विद दैट लेट अस मूव टू द करेंसी अपडेट। जैसे हमने कहा कि बाहर दरख से पैसे तोड़ो तो टिकट के पैसे खरीदो, जानना बहुत जरूरी है कि करेंसी कहाँ स्टैंड कर रही है, यूएस कहाँ डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। तो जी यूरो इस वक्त ट्रेड कर रहा है 0.87 पे, ब्रिटिश पाउंड 0.74 पे स्टैंड कर रहा है, इंडियन रुपी से 95.44 पे ट्रेड कर रहा है, और कैनेडियन डॉलर इज स्टैंडिंग एट 1.42, जबकि पाकिस्तानी रुपी 278.31 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर, नेपालीज रुपी 152.79 जबकि बांग्लादेशी टका 123.36 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर। इस गाने के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो आई विल टेल यू द गोल्ड प्राइस अपडेट, बने रहिए मेरे साथ।

ऑलराइट एंड विद दैट देने लगी हूँ आपको जी गोल्ड प्राइस अपडेट. हमारा फाइनेंस का सिलसिला अभी जारी था, अभी दिया था आपको करेंसी अपडेट और बताते चलें जी goldprice.org के मुताबिक इस वक्त यानी कि फ्राइडे जुलाई द 3rd 4:52 PM इन द स्टूडियो एंड गोल्ड प्राइस पर आउंस राइट नाउ इज $4,175.07 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इज $134.23. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $2.01 का इजाफा हुआ जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $62.59 का इजाफा देखने को मिला. बट दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण. एंड आफ्टर दिस सॉन्ग जो मैं आपके लिए लगाने लगी हूँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रैफिक एंड दैट विल बी प्रोबेबली द लास्ट सेगमेंट ऑफ द डे.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द ट्रैफिक अपडेट. जी एक इंसिडेंट नजर आ रहा है हमें, बट दैट्स ऑफ कोर्स जब भी एक या कोई भी इंसिडेंट ना हो तो दैट इज एन आइडियल सिनेरियो, बट एक इंसिडेंट भी इज गुड न्यूज कि ज्यादा कुछ रोड्स पे नहीं हो रहा. द इंसिडेंट दैट इज रिपोर्टेड इज एट 75 टुवर्ड्स मॉकिंग बर्ड लेन नॉर्थ बाउंड. दिस इज अ कलिजन एंड द सिवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. टू लेन्स आर ब्लॉक्ड और दोनों जो हैं वो एग्जिट लेन्स हैं जी. तो यू देयर लॉट ऑफ बैकअप इज पाइल्ड अप हियर. सो अगर आप यहां पहुंचने वाले हैं तो यू माइट फील सम डिलेज. अदरवाइज ऑन द रोड्स ऑफ डैलस एवरीथिंग सीम्स प्रीटी क्लियर टू मी. सो एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड. आज ऑफकोर्स लॉन्ग वीकेंड, बहुत सारे लोग आर ऑन हॉलीडे एंड एंजॉइंग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. एंजॉय योर 4th of July. एंजॉय योर फायर वर्क्स. आप आज देखने जा रहे हैं, कल देखने जा रहे हैं. इट इज गोइंग टू बी इट इज 250th anniversary, US anniversary. So of course it is a big day and mujhe lagta hai ki fireworks bhi is baar even more beautiful aur powerful hone wale hain. So enjoy that. I will see you Monday once again on the same radio station, 104.9 FM Fadeja Radio, 2:30 PM to 5 PM. I am here with you 5 days a week, Monday through Friday. Main hoon Kiran. This is your afternoon drive time with Suneri Kiran. Have a lovely weekend.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: ये set सिर्फ शादी के लिए ठीक है. ये वाला बहुत heavy है. और ये कब पहना था last time?
8: तो पहनती क्यों नहीं हो?
7: कैसे पहनूं? या तो heavy या फिर special occasion type.
8: तो रोज वाला ले लो.
9: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
10: Ritesh, कभी सोचा है? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
10: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
12: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
14: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
15: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
16: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
15: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
17: बेटा, 95% आए?
18: हाँ मम्मी.
17: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
19: मेरा?
17: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
19: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
9: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
20: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
21: It's Lawson.
20: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
21: It's Lawson.
20: Daddy, what is the law?
22: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
18: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
19: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
18: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
19: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
21: हेलो टेक्सास परिवार

0: बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
1: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? यस, वी हैव लोन ऑप्शंस फॉर यू. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. एंड 96.6.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

0: न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।
1: सुपर, पानी बह जाए तो हमारा जो मौसम है बेटर हो जाए। दोस्तों सुन रहे हैं 104.9 FM फर्नीचर रेडियो। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपकी होस्ट नवनीता 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रहूंगी आपके दिलों में, क्योंकि वहीं पर बसना मुझे अच्छा लगता है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए। और ये पानी बरस जाए तो इतनी सारी जो गर्मी पड़ी है ना वो थोड़ी कम हो जाए। वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और बहुत कुछ बातें तो होने ही वाली हैं।
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में दोसा।
5: क्या आपको भी हमेशा दोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
7: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
5: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
8: ये तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
4: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
10: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
11: प्लीज डोंट सी यू यूज place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
14: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
15: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
14: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
16: हाय, दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: वीकेंड का वाइब लेके आ गई हूँ मैं आपकी होस्ट नवनीता, लेकिन अब तो आज तो मैं ये नहीं कह सकती वीकेंड का वाइब कल से ही शुरू हो गया, क्योंकि आज ऑलरेडी वीकेंड है, आज छुट्टी है 4th of July, चाहे कल हो, यू नो यही सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो हक की छुट्टी है ना वीकेंड में नहीं मारी जाती. व्हेन यू आर इन अमेरिका दे टोटली रिस्पेक्ट दैट यू डिज़र्व दिस हॉलीडे एंड दैट टू इंडिपेंडेंस डे का हॉलीडे. चाहे वो वीकेंड में पड़े, हमें लॉन्ग वीकेंड ज़रूर मिलता है, चाहे मंडे मिले या फिर फ्राइडे मिले. सो वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस डे, जो हर जिंदगी में हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और वी शुड बी ग्रेटफुल कि हम इंडिपेंडेंट हैं. यार सच पूछिए, छोटी छोटी बातों में जब इंडिपेंडेंस नहीं रहती है ना, तो लगता है कितने हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं. और ये बहुत बड़ी बात है कि एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो. हल्के में ले लेते हैं बहुत बार. आप सोच के देखिए, जॉब में भी हम फंस जाते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं और हमें बंधन लगता है. रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी दैट बंधन वेयर यू डू नॉट फील द फ्रीडम, यू डू नॉट फील द इंडिपेंडेंस. एंड देर कैन बी इन मैनी मैनी अदर थिंग्स जो आप खुल के नहीं जी सकते. खुल के जीने में जो आज़ादी है, वो जो खुली हवा की सांस है, जॉब भी कभी कभी आपको घुटन कर देता है. जब आप अपना खुद का कुछ कर लेते हैं, यू बिकम एंड यू फील टोटली इंडिपेंडेंट. आप सबको ये इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो.

0: माशूका माइंड ब्लोइंग कॉकटेल टूर का ये वाला गाना, सारे सारे कॉकटेल के गाने भी बहुत अच्छे हैं. मूवी क्वाइट अ गुड स्केल मूवी, दोनों एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है एज वेल एज द हीरो. सुन रहे हैं कॉकटेल टू काफ़ी समय से, एंड दिस वॉज ब्रॉट टू यू इन अमेरिका बाई फनी फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन. सुपर डुपर मज़ेदार है बात ये, और मज़ेदार बात तो मैं क्या बताऊँ, एक छोटी सी बात है किसी ने कहा और मैं सोच रही थी वाह क्या बात है. जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट. ये तो मानना पड़ेगा.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

इश्क कमीना होता है, इसीलिए तो मैंने कहा था जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। इश्क कमीना। आई एम जस्ट सिंगिंग द सॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीबॉडी। बट दोस्तों पता है, एक छोटी सी बात हो सकता है जिंदगी में, ऐसी कुछ बात जो परेशान करके रख दे, जैसे कि कोई स्लिप एंड फॉल या फिर कोई कार एंड ट्रक एक्सीडेंट। यस, बैड बट हैपन्स, दैट इज़ द वाई इट्स कॉल्ड एक्सीडेंट। अटर्नी ओमर ख्वाजा हैं हु विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, यार बहुत स्ट्रेसफुल होता है। यू नीड एन अटर्नी दैट कैन मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड फॉर वॉट यू डिजर्व, नॉट जस्ट बिकॉज यू नीड टू बी कॉम्पनसेटेड, बट यू डिजर्व इट तभी, एंड यू डोंट पे अंटिल यू विन। सो प्री कंसल्टेशन के लिए आप ही के लिए है, आप ही की मदद के लिए आप ही को कॉल करना पड़ेगा ना। फोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046, या फिर विजिट कीजिए अटर्नी ओमर डॉट कॉम। क्या कर रही है जनता, जनता क्या कर रही है हमारे डैलस में? आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, फायरवर्क्स देखने जा रहे हो, या फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हो, या फिर बस रेडियो स्टार्ट करके एंटरटेन हो रहे हो घर में, और या फिर कोई कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लंबी ड्राइव है और हमें सुन रहे हो, फोन ड्राइव नंबर दबाइए, मुझे बताइए क्या कर रही है जनता। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर।

0: की शो।
1: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
2: हाँ, देख लेंगे।
1: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाए?
2: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
3: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस। PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस, नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलसिस न्यूएस्ट।
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम July 3rd to 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
15: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
1: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन your first visit.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
17: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
18: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
20: Calculating route. Rerouting.
0: Rerouting.
5: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
0: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
5: क्यों?
0: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
5: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
19: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
0: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
20: स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम, स्वागत, गुड इवनिंग। पनेजर रेडियो सुन रहे हैं आप अभी इस वक्त ऑन दिस अमेजिंग इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के सेलिब्रेशन पर। सब सेलिब्रेशन मूड में हैं, या फिर आप फैमिली के साथ मस्ती कर रहे हैं, या फिर फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं, और फिर गर्मी तो गर्मी है। कहते हैं किसके जिसके पास एसी नहीं है ना, उसको गर्मी से पसीना आता है, और जिसके पास एसी है उसको एसी का बिल देखकर पसीना आता है। कहीं ना कहीं तो सब कुछ बराबर हो ही जाता है। इमेजिन हम इतना पैसा कमा लेते हैं और फिर कुछ काम नहीं करते क्योंकि हम हेल्प ले लेते हैं, और फिर वही पैसा जाके जिम में देना पड़ता है अपने आप को, इतने जो आराम शुदा हो जाते हैं। तो वी हैव टू गेट आवर बॉडीज फिट बाई गोइंग टू द जिम। हम कहीं काम वाम में लग जाए अपने घर में, तो वहीं आपके जो कंप्लेंस हैं आपके वेट के वो निकल जाएंगे। यही है ऊपर वाला ना, सबको बराबर से ही देखता है। पैसे कमाने से खुशियाँ नहीं आती, हैप्पी होने से खुशियाँ आती हैं। टू बी इन द नाउ।

रचुनरी, वाओ ब्यूटीफुल। यस्टर ईयर का गाना फिर से जब आ गया है, जवानी तो इश्क होना है, उसी गाने को वापस से लेकर, विच वॉज वंडरफुल। वैसे जब फिल्में आ जाती हैं नई नई, सो इट जस्ट फील सो गुड। जैसे कि इसी हफ्ते रिलीज हुई है अल्फा, आलिया भट्ट एंड शर्वरी, बॉबी जेल भी है, सो इट इज़ फ्रॉम द स्पाई यूनिवर्स, यशराज फिल्म की। मुझे देखने जाना है जो कल मैं जाने वाली हूँ, एंड आई विल कम एंड लेट यू नो कि तब तक तो ओल्ड हो जाएगा। हाउ एवर, ये दोनों की दोनों, शर्वरी और आलिया भट्ट, आर द यू नो क्वींस ऑफ एक्शन इन दिस फिल्म, एंड दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस लाइक मी। आई एम गोइंग फॉर अल्फा। तो अल्फा ये रहा आपके लिए।

मैं हूँ अल्फा, ये वाला ब्रांड न्यू गाना जो अल्फा फिल्म में रिलीज हो चुकी है आज ही आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। मतलब वैसे अगर आपको देखना है तो क्यों देखना चाहिए अल्फा। अल्फा डिलीवर्स स्लिक एक्शन, स्टाइलिश विजुअल्स एंड कमिटेड परफॉर्मेंसेज, और ये आलिया भट्ट और शर्वरी की तरफ से बहुत ही उन्होंने कमिटेड परफॉर्मेंस डाला है, घुस गए हैं अपने कैरेक्टर्स में। एंड आलिया कन्विंसिंगली स्टेप्स इन टू द एक्शन हीरो स्पेस, और ये जो यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं विथ फीमेल, फ्रेश फीमेल लेड परस्पेक्टिव। तब आप कैसे दुनिया खाली यू नो द स्पाई यूनिवर्स विथ ऑल द मेल स्टार्स द खान्स से ही चलती, हमें तो ज़रूरत थी कि लड़की भी घुसे, वो स्पाई यूनिवर्स कंप्लीट ही नहीं होगा ना। और दिस यूनिवर्स फ्रेश है, फीमेल लेड है। हाउएवर द स्क्रीन प्ले एंड इमोशनल डेप्थ डोंट मैच द स्केल ऑफ द एक्शन, मेकिंग द फिल्म एंटरटेनिंग बट नॉट एक्सेप्शनल, ये सुनने में आया है इस कहानी को लेके। बट वर्थ वॉचिंग फॉर द परफॉर्मेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस ऑफ दीज टू गर्ल्स, यू विल लव इट। ये जो यशराज फिल्म्स की फ्रेंचाइज है, वॉर ले लीजिए या पठान ले लीजिए, यू नो इट वोंट बी ऑन दैट लेवल, बट अभी भी स्टार्ट हुआ यार, दे हैव जस्ट एंटर्ड। अगली वाली देखिएगा, धमाल ना करे ना तो मेरा नाम बदल लीजिएगा।

ब्यूटीफुल 104.9 एफएम फनी क्रेडिट सुन रहे हैं हम. छोटा सा एक ब्रेक के तरफ जाने की तो फुल फ्लेजेड कोशिश में है, बट आई वाज थिंकिंग कि लेट मी प्ले दिस सॉन्ग और फिर उसके बाद चले जाए, सो दैट मैं जब लौट के आऊँगी तब मैं अभी नेक्स्ट वाली बात आपसे करने वाली हूँ जो करने वाली हूँ. दिस सॉन्ग, व्हाई नॉट.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: This set is only for marriage. This one is very heavy. And this, when did you wear it last time?
7: So why don't you wear it? How
6: do I wear it? Either heavy or special occasion type.
7: तो रोज वाला ले लो।
8: India's most loved everyday jewelry brand, Karat Lane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Karat Lane now open next to Tanishq in Frisco.
9: मामू, देखो क्या हो गया?
10: ओ क्या हो गया?
9: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया। और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
10: ओए जर्मन का कमाल है।
9: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
10: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
11: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
11: AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
15: सुनो कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
16: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
15: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
16: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
17: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
18: इट्स लॉसन।
17: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
18: इट्स लॉसन।
17: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
19: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458, द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
15: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
20: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
15: कैसे?
20: पेज 3 ईटरी?
15: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
20: Dude, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
15: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
16: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
21: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
22: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar Program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
0: सुपर गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, स्वागत है आप सबका यहाँ पर. और बजाय अभी अभी आपको बहुत कमाल की फर्स्ट क्लास टिकट मिल सकती है. सुनते रहिए मेरा शो एंड विशाल एंड शेखर आर कमिंग हियर लाइव. एंड ऑल यू कंप्लीट बॉलीवुड फैंस, आपकी जो प्ले लिस्ट है अभी जो भी मैं बजाने वाली हूँ वो वॉली में आपकी प्ले लिस्ट 100% होने

सुनते रहिए मेरा शो एंड विशाल एंड शेखर आर कमिंग हियर लाइव एंड ऑल यू कंप्लीट बॉलीवुड फैंस, आपकी जो प्लेलिस्ट है अभी जो भी मैं बजाने वाली हूँ वो वाली में आपकी प्लेलिस्ट 100% होने वाली हो। और लाइव आप इन दोनों को देखना चाहते हैं तो फिर आपको तो टिकट्स खरीदने ही है, लेकिन अभी आप मेरे शो सुनते हैं तो आपको मौका मिल सकता है टू विन टिकट्स टू विशाल एंड शेखर बिहाइंड द बिगेस्ट सुपर हिट्स एंड दिस टूर इज हैपनिंग ऑन संडे जुलाई द 12th एट द कर्टिस कलविल सेंटर इन गार्लैंड। टिकट सेल पर है नाउ एट cashpatelproductions.com, पर you can actually get tickets here, or if you want to buy your tickets use Fanisha code to get a 30% discount. And ये जो दो टिकट आपको मिलने वाली है ना अभी मेरे शो पर, बस सुनते रहिए मुझे और क्या।

और ये वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द 2028 ओलंपिक्स विच इज़ गोइंग टू हैपन हियर इन अमेरिका. और यही होने वाला है कि शाहरुख खान कदम रख चुके हैं हमारे इंडिया से, क्योंकि क्रिकेट हो और इंडिया ना हो, कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है ना. तो आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको शाहरुख खान इनवाइट करते हैं टू वॉच अ क्रिकेट मैच विथ हिम, आप किसको लेके जाएंगे? हु वुड यू टेक अलॉन्ग व्हेन शाहरुख खान इनवाइट्स यू? कहते हैं कि शाहरुख खान आते हैं और बोलते हैं, हेलो आई एम इनवाइटिंग यू, कम वॉच द क्रिकेट दैट आई हैव हियर ऑर्गेनाइज फॉर यू इन माई स्टेडियम. सुपर डुपर विशाल शेखर को सुन रहे हैं आज हम और उनके गाने. कुछ सच में सुनना है तो कॉन्सर्ट तो जाना पड़ेगा. इस गाने के बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, आंसर देते हैं तो फिर

Super! Someone out here is completely rocking. ऐसा पता है शाहरुख खान की बहुत सारे गाने बनाए हैं विशाल शेखर ने, बहुत सारे. एंड अभी शाहरुख खान को जब मैं सुन रही थी इस गाने में, देख रही थी इस गाने में, सो आई रिमेम्बर्ड आज उनके अराउंड बहुत अमेजिंग सैन न्यूज़ है. शाहरुख खान नाइट राइडर ग्रुप हैज़ unveiled a new international standard cricket stadium in Los Angeles. हमारे अमेरिका में आ रहे हैं शाहरुख खान. कैन यू इमेजिन, ही इज़ ग्रोइंग, ही इज़ मेकिंग अस प्राउड एंड ही इज़ गोइंग टू बिल्ड अ स्टेडियम इन लॉस एंजलिस. अनदर बिग स्टेप फॉर क्रिकेट्स ग्रोथ इन द यू एस.

0: इश्क वाला लव सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो। आने वाले हैं विशाल और शेखर हमारे ही शहर में, एंड दैट्स हैपनिंग July 12th। पता है, अगर आप स्पार्कल खोज रहे हैं जिंदगी में, एड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स, वो भी खोज रहे हैं, Head to Malabar Gold and Diamonds on Preston Road in Frisco. Your destination for stunning diamond jewelry that's elegant, timeless and crafted to shine. Bahut khoobsurat wahan rings hain, earrings hain, to dazzling necklaces and contemporary diamond styles. Find the perfect piece of engagements, anniversaries, celebrations or simply treating yourself. Experience and match craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamond in Frisco. और पता है, भूलिएगा मत, डाउनलोड कर लीजिए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड का मोबाइल ऐप फॉर द लेटेस्ट कलेक्शंस, अपडेट्स एंड मोर डिटेल्स। और इसी के साथ हम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के साथ रहते हैं, तो मैं सोच रही थी कि आप क्या करने वाले हैं, करनी तो वाले हैं, कोई सिचुएशन दूँ मुझे और आपको मुझे बताना है कि कौन सा विशाल शेखर का गाना आप इस सिचुएशन में फिट कर सकते हैं। यू फाइनली फिनिश वर्क ऑन फ्राइडे इवनिंग, फिर एक बहुत ही पॉपुलर विशाल शेखर का गाना है, वो कौन सा गाना आपको याद आ रहा है कि आपने काम ख़त्म कर लिया है, अब फ्राइडे इवनिंग आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हाउ विल यू Do it. 9025555555 है स्टूडियो का नंबर। जैसे भी करे गाना यूज करना पड़ेगा विशाल शेखर वाला। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: इज इट द मूवी आई हेट लव स्टोरीज, सोनम कपूर, बहारा, इज इट दैट सॉन्ग?
0: व्हाट इज योर नेम मैम?
1: दीपा।
0: All right.
1: Today's my birthday, by the way.
0: Happy birthday to you. You know, there's a lot of disturbance in your call, but amazing. Congratulations. Wishing you a very, very happy birthday. Let me know which song which song can I play for you?
1: Bahara.
0: Yes, from I love, I hate love stories. Absolutely. It's coming up. Thank you. Good evening, Financial Radio. You are live on air.
2: Hi, I'm Saida Borum.
0: शहीदा जी बताइए आपका आंसर क्या है?
2: मेरा आंसर है शीला की जवानी।
0: ओ माय गॉड, सारे डांस फ्लोर में शीला की जवानी बजाते हैं ना। ऑलराइट शहीदा जी, आप सुनते रहिए, मेरे को कुछ आंसर्स चाहिए, एंड देन आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ लॉटरी हियर एंड देन प्ले योर सॉन्ग।
2: लॉटरी अच्छी होती है
0: ना, अच्छी होती है लॉटरी,
2: मतलब कभी कभी लॉटरी, कभी जैसे आप लोग देते हैं 3 नंबर वाले को, कभी किसी को किसी, तो वो भी चलता है।
0: तो उससे क्या होता है ना, आपके उम्मीद, आपको लगता है कि ऊपर वाला मेहरबान है, आपका लक क्या चल रहा है जोरदार।
2: चलना चाहिए, बहुत दिन से नहीं चल रहा था।
0: चल रहा है। आप जाएंगे क्या ये विशाल शेखर के शो पर?
2: जी जाऊंगी,
0: है ना, जाएंगे ना, बहुत धमाल होने वाला है, सारे गाने इतने अच्छे हैं,
2: बहुत जबरदस्त लोगों का काम है।
0: हाँ, आप कहीं जाएगा, मैं सुनते रहिए फाइनेंशियल रेडियो। ओके
2: ओके ओके,
0: थैंक यू। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो, और सवाल है एक टिकट का बाबू। एंड यू नो, ये जो बहारा बहारा, इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था आई हेट लव स्टोरी का ये जो गाना, एंड आई हैड एक्चुअली पिक्ड आउट द बहारा सॉन्ग, एंड मुझे लगा वाह इनको कैसे पता मैंने बहारा लगाया हुआ है, बट पता नहीं कहीं से तो उनको पता चल गया। होता है, कभी कभी दो लोग सेम चीज सोच लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन।

0: इस वक्त मैं वापस से इसको ब्रेक दूंगी क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है. आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नोटिस कि 6:20 का ब्रेक आ रहा है, बट आपका गाना तुरंत इस ब्रेक के बाद बजेगा. और मुझे प्लीज शाहिदा जी कॉल कर लीजिए. यू हैव वन द टिकट, वन टिकट टू दिस अमेजिंग विशाल शेखर कॉन्सर्ट दैट इज हैपनिंग इन डैलस. वाओ.
1: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया.
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
4: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ. फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल, कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897. Or visit astrologerishwar.com.
5: I've been researching retirement planning.
6: Oh, really? Where?
5: Google, YouTube, a guy on TikTok.
6: Or you could just talk to WealthTactic.
5: What's the difference?
6: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
7: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077. Or visit them at thewealthtactic.com.
8: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or 5 rings. Dine in only.
7: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
9: ये तेरा घर, ये मेरा घर.
10: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
11: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
10: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
7: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
1: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
13: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
7: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
14: छोटा सा मेरो मदन गोपाल.
15: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit DFW Hindu Temple.org. Jai Shri Krishna.
0: वेलकम बैक दोस्तों, कंग्रेचुलेशन शाहिदा जी, आपने जीता एक टिकट टू दिस अमेजिंग विशाल शेखर लाइव कॉन्सर्ट जो होने वाला है जुलाई 12th को. एंड दिस सॉन्ग बहारा वॉज बीन प्लेड फॉर लीसा. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू लीसा वन मोर टाइम. और हम ब्रेक में चले गए थे उस समय, बट दैट सॉन्ग इज बीइंग प्लेड नाउ राइट हियर ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो.

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संधिरा, सिर्फ तुम्हारा।

बहारा बहारा, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म आई हेट लव स्टोरीज। और सुन रहे हैं आप 104.9 FM फनी चरियो। जो पता है खान्स की खबर में एक आमिर खान की ब्रांड न्यू न्यूज़ है जो आपको मेरे को बतानी थी। यू नो ही इज़ अगेन गेटिंग मैरिड एंड ही इज़ नाउ गेटिंग मैरिड टू गौरी स्प्रैट और इसी वीकेंड में उनकी शादी होने वाली है। और उन्होंने कन्फर्म कर दिया दैट ही विल मैरी हिज लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट ऑन July 5th, यानी कि परसों। आज 4th of July नहीं है, कल है 4th of July, easy to remember, 5th of July ko he's going getting married in an intimate ceremony at his home under a special marriage act with around 100 to 150 close family friends and you know apne nazdiki logo ke sath jo attend karenge inki shaadi. Aamir Khan to marry Gauri Sprat, his very very long time partner. 104.9 FM फनी जॉडी पे कुछ गाने सुन रहे हैं हम ऑफ आर वेरी ओन विशाल शेखर जो डैलस आने वाले हैं। और डैलस आ रहे हैं तो हम डैलस में तो धमाल करेंगे उन्हीं के साथ, और डैलस में हम धमाल करेंगे उनके साथ। तो टिकट्स भी चाहिए और टिकट्स जो है वो मैं भी दे रही हूँ और आप ख़रीद भी सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट गो Get your tickets as well. कहाँ? अच्छा इस गाने के बाद बताते हैं। मैं बता दूँ, it's cashpatelproductions.com पर है टिकट्स।

0: ब्यूटिफुल 104.9 FM फनेजा रेडियो सुन रहे हैं आप, और इस रेडियो पर दिए जा रहे हैं कुछ टिकट, एंड दैट टिकट इज़ फॉर विशाल शेखर का कॉन्सर्ट। तो अभी एक गाना मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश में, और आपको मुझे बताना है वो कौन सा विशाल शेखर का गाना जो है वो हिंदी गाना क्या है। ओके, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। दिस इज द इंग्लिश गर्ल हिंदी, बट आई एम टेलिंग यू द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम सॉन्ग जो आपको मुझे बताना है पहचान के कि कौन सा हिंदी गाना है। इफ द डेस्टिनेशंस गेट हेजी देन लुक डाउन फॉर अ मोमेंट, वेर एवर योर हेड बोज डाउन देयर यू विल फाइंड द पाथ टू गॉड। You can change your destiny, be strong and keep moving on. My footprints are your companion. You don't know that God is nearby. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, उठाइए और दबाइए, फोन उठाइए नंबर दबाइए, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। वैसे अभी तो मैंने बता रही हूँ ये वाला जो गाना आप सुनेंगे इसके बाद मैं आंसर बताने वाली हूँ। वैसे आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय
0: हाय,
1: या सो दिस इज द सुना जाने आसपास है खुदा सॉन्ग फ्रॉम अंजना अंजनी।
0: माय गॉड, ये आपको कैसे पता चला? इतना कंफ्यूजिंग क्या क्या नहीं बोला मैंने क्या है आपका नाम? yeah. कहां से पता? वो लास्ट वाले लाइन से पता चला ना, यू डोंट नो दैट गॉड इज नियर बाय। मैं सोची थी छुपा लूँ उस लाइन को, बट ग्रेट। व्हाट इज योर नेम?
1: माय नेम इज शुभम।
0: शुभम,
1: या
0: शुभम, आप रुकिए, आप कहीं जाएगा मत, मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ और मेरे लिसनर्स को ये आसपास खुदा सुना ही देती हूँ। इस गाने का इतना खूबसूरत जो मैंने बोला इंग्लिश में, इफ द डेस्टिनी गेट्स हेजी

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
2: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
1: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
2: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 of duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
6: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
7: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिसर्च में वेरी।
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
13: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
18: स्वागत नहीं करोगे मेरा? जी हाँ, आप सबका स्वागत है दोस्तों 104.9 FM फनी जार रेडियो पर, 5 hours फ्रॉम दी हार्ट, सुबह शाम दिन रात रोजाना हफ्ते हम आते हैं हंसते हंसते और चाहते हैं आपकी एक मुस्कान. यस, गिव अवे द 2 tickets टू अमेजिंग शो विच इज विशाल शेखर शो दैट इज कमिंग इन टाउन. और आप लोगों को टिकट चाहिए तो 30% डिस्काउंट में डेफिनेटली मिल सकता है. बस आपको फन एशिया का डिस्काउंट कोड यूज़ करना है एंड यू कैन बाय दिस फॉर द संडे जुलाई 12 शो. कर्टिस कलवेल सेंटर में आ रहे हैं ये दो दिग्गज आस पास खुदा. वी जस्ट स्टार्टेड द सॉन्ग एंड दैट वॉज द सॉन्ग. बट मेरा सबसे फेवरेट विशाल शेखर का हम हर टाइम फेवरेट सॉन्ग रहा है दिस मंथ.

हे नाव 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 ही था इस फिल्म का नाम, बट यू नो दैट सॉन्ग जस्ट स्टेड सो मच इन माई माइंड विद मी. पता है झेलू राम ना एक ज्योतिषी के पास गए थे, यू नो जो पाम रीडिंग करते हैं ना, उनके पास गए तो पाम रीडिंग करा रहे थे. तो पाम रीडिंग वाले ज्योतिषी उनका हाथ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हस्तरेखा से ये पता चल रहा है कि तुम्हारे घर के नीचे बहुत धन है, टू मच ऑफ मनी अंडर योर होम, लेकिन किंतु परंतु ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है, काम आ ही नहीं सकता, इतना पैसा होकर भी कुछ काम नहीं आएगा. झिलम करते, अला सच कहा पंडित जी आपने, मेरे घर के नीचे तो बैंक है. वो फ्लैट में रहते, उनके घर के नीचे बैंक है, इतना पैसा है, कुछ काम उनके नहीं आने वाला. ओह माय गॉड, सीरियसली, ऐसे ऐसे जिंदगी में इतने पैसे हो के मिलने वाले नहीं है तो क्या ही तो हो जाएगा. सुन रहे आप 104.9 FM फन एशिया रेडियो मेरे साथ. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए.

है वही है वही है वही नो है वही सो क्यूट है वही दिस गाय फ्रॉम बैंड बाजा बारात आवर रणवीर सिंह हैज कम सच अ लॉन्ग वे. अनुष्का शर्मा एज वेल, दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू. पर रणवीर सिंह की तो ये फर्स्ट फर्स्ट थी फिल्म, और धुरंधर में तो क्या कमाल किया है इस पुत्र ने, इस औसम बंदे ने. वैसे औसम से याद आया, औसम है मौसम कि नहीं है मौसम, क्या बताओ. गर्मी उफ गर्मी, आय गर्मी, हाय गर्मी, और गर्मी, हाँ गर्मी ही गर्मी. वही बात है, फील्स लाइक तो 100 से ऊपर है लेकिन अभी भी 90s में ही लटक रहा है ये गर्मी. वैसे आज तो 90s में ही था टेम्परेचर, और रात को कम हो जाएगा 78 डिग्रीज. तो लो इज 78, 98 हाई, बट फील लाइक तो जो आप फील करेंगे वही है. कभी कभी कॉमेडी यही होती है, जब फील लाइक हम कैसे बता सकते हैं, मुझ पे छोड़ दो, हाउ डू आई फील, आई माइट नॉट इवन फीलिंग फील लाइक 100, आई माइट बी फीलिंग इट लाइक 120. यू नो फील लाइक इज माई फील, लाइक आई फील अ फनी फील, अ फनी फील आई फील, एंड इफ यू फील द फील आई फील, आई फील द फील यू फील, सो फील लाइक इज अ फीलिंग. बट सैटरडे कल है शनिवार, 77 लो 97 हाई, और संडे के दिन पार्टली क्लाउडी रहने वाला है विद 74 लो एंड 95 हाई. हवाएं भी इस हफ्ते कम ही है 10 miles per hour पर, सो इट्स नॉट सो विंडी ऑल्सो, तो कभी कभी 15 miles 20 miles हो जाए ना तो एटलीस्ट शाम को अच्छा लगता है, हवा चल रही है. अभी हवा भी कम चल रही है. शुरुआत ऑफ द वीक मंडे इट्स पार्टली क्लाउडी विद 74 हाई लो एंड 94 हाई. थम्स अप नहीं, ट्यूसडे टेरिफिक ट्यूसडे में AM एंड थंडर स्टॉर्म्स है, थोड़ी बारिश आना दिन है. सो 76 लो 96 हाई, तो ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे खींचने वाला है. और मझधार ऑफ द वीक में अगेन मोस्टली सनी ही रहेगा, एंड फिर से 98 चला जाएगा टेम्परेचर एंड 79 लो. थम्स अप थर्सडे पार्टली क्लाउडी 79 लो बट 99 हाई. दैट इज द फोरकास्टेड वेदर टेम्परेचर. अगेन फील लाइक आई लीव इट ऑन यू. 99 हो रहा है, थम्स अप थर्सडे. फ्राइडे फिर मैं आ जाऊंगी नाचते गाते गाना सुनाने पार्टली क्लाउडी वाले दिन पर. 79 हाई 98 लो, सॉरी उल्टा है, 98 हाई 79 लो. पर ये तो हफ्ता, ये महीना ऐसे ही जाने वाला है. डैले से मेरी जान, गर्मी से क्या भागना, गर्मी से क्या डरना, हम नहीं डरते. आने दो आने दो, हम फील लाइक कम करा लेंगे. 98 होगा, हम फील लाइक करेंगे 80. जाओ फील ही नहीं होने देंगे, एसी में रहेंगे, 70 फील लाइक हो जाएगा. करेक्ट.

0: ब्यूटीफुल है ना ये वाली पहली बार जो गाना दिल धड़कने दो में से. एंड देयर वी हैड वंस अगेन रणवीर सिंह विद अनुष्का शर्मा. वो समय जब उन्होंने पहली बार काम किया था, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग विच आई प्लेड फॉर यू, बैंड बाजा बारात से. एंड देन फिर पहली बार वाला गाना एग्जैक्टली दिल धड़कने दो. रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा वी सॉ देम टुगेदर देयर, दैट वाज सुपर सुपर कूल. एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत खूब कहा किसी ने, जो कभी न भर पाए ऐसा भी एक घाव है, जो कभी न भर पाए ऐसा भी एक घाव है, जी हाँ उसका नाम लगाव है. सो ब्यूटीफुल. मिलती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा मत.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन.
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax.
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमार.